सब कुछ यहीं बच जाता है, बस आखिरी में इंसान नहीं बचता है। 5:30 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इस बात की ही खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है, इस बात की ही खुशी मनाइए। गम ए दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

5:46 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

नमस्कार, FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ोन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026, सुबह के 5:55 और ठीक 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रंप ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर

0: अधिकार का हरण हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही आनंद से भरी होगी। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सुनिएगा श्री रामचरितमानस का भाग 278 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम, संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। इस कार्यक्रम का 12वां भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर पंद्रह मिनट से सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 और 8:15 से चित्रलोक लेकर आएंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री श्रीदेवी पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से। दस बजे से पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे में अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से पियानो वादक, संगीतकार, गायक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। बारह बजकर पांच मिनट से लेकर आएंगे यादों की महफिल। 1 बजे से सुनिएगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे का वक्त होगा। दिन में 3 बजे से सखी सहेली। विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, साड़ियों का संसार, खंडुआ साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके में मेहनत, व्यंजन में ओट्स के व्यंजन, दिनचर्या में अखबार पढ़ने की आदत। ये होंगे आज के विषय। चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान में लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। 5 बजे से छायागीत। 5:30 से तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। 7:00 से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर आएंगे।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन आंधी, लेखक निर्देशक भृंग तुपकरी। नौ बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए । 10 बजे का वक्त होगा छाया गीत का।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि, शांत चित्त, शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 278।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, और कल की कड़ी में हमने शुभाजी से सुनी थी कजरी। और जैसा मैंने कहा था कि एक और कजरी सुनने का मन है, एक और कजरी सुनने का मन है, तो शुभाजी आज फिर से कजरी हो जाए।
1: जी जरूर, और कुछ ऐसी कजरी सुनाना चाहूंगी आपको और उनके बारे में बात भी करना चाहूंगी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि से जुड़ी हुई बातें हैं। काशी के एक विख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
0: इनको और इनके नाम को कौन नहीं जानता।
1: तो उनकी बहुत सारी कजरी जो है वो उन्होंने प्रकाशित भी की, और हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। जैसे एक बहुत उनकी जानी मानी कजरी, उनकी लिखी हुई, कहनवा मानो हो दिल जानी, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। और विख्यात गायिका से श्रीमती गिरजा देवी जी, उनसे भी हमें सुनने को मिलती हैं ये चीजें। तो भारतेंदु जी ने तो बहुत कुछ लिखा, और हर ऋतु के लिए लिखा, हर उत्सव के लिए लिखा, दीपावली के लिए भी लिखा सब, लेकिन जो कजरी का उनका संग्रह है वो कुछ विशेष है। और वो उनके मित्र और अन्य जो साहित्यकार थे उनके साथ वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसमें कि प्रेम घन इत्यादि जो लोग थे उनकी भी कजरियां प्रकाशित होती थी, और उनकी भारतेंदु बाबू की स्वयं जो कजरियां थी वो भी प्रकाशित होती हैं।
0: शुभा जी, जैसा आपने कल बताया कि कजरी के दंगल होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी तो ये चीज चाहिए किसे गाया जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: तो तब ये जो प्रचलन था
1: जी
0: कि कजरी के अखाड़े, कजरी का दंगल, एक दल सुनाएगा फिर दूसरा दल सुनाएगा, तो इसमें कुछ और शब्दगत खासियत भी होगी, विशेषता होगी जो आप आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कजरी सुनाने जा रही हैं।
1: जी आज उन्हीं की कजरी सुनाऊंगी
0: तो।
1: और वैसे तो उनकी एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कजरी है जो कि झूले के बारे में है कि राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा, वो बहुत प्रचलित है। लेकिन मुझे लगा कि एक कुछ दूसरी कजरी सुनाई जाए आपको भारतेंदु बाबू की। तो बिन सांवरे पियरवा जीय की जरन न जाए। वैसे तो भारतेंदु बाबू की जो ये पंक्तियां मिलती हैं वो केवल चार पंक्तियां हैं उनकी इस कजरी में, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा।
0: वो कैसे हैं?
1: एक सेकंड आपको पूरी रचना सुनाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ है वो भी देखते हैं। तो ओढ़ो सुरख

चुनरी तापे श्याम चदरा, ये लिखते हैं वो। देखो बिजुरी चमके बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। ये जो चार पंक्तियां हैं ये उनकी उनके संग्रह में मिलती हैं। लेकिन अब जैसे वृंदावन यदि आप जाएं या ब्रज का जो ब्रज में अगर आप जाएं तो ब्रज भाषा की में भी ये बहुत प्रचलित है, उस एरिया में भी बहुत प्रचलित है ये, और वहाँ पाठ भेद और पाठांतर काफी मिलता है। तो मंदिरों में जो कजरी गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है, जिसमें कि पहली जो पंक्ति है वो तो भारतेंदु बाबू वाली ही है, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अलग हो गया है वो इस प्रकार।

0: पदरा ऐसे करके और भी अंतरे जोड़ दिए गए हैं, तो ये पाठ भेद आ गया है
1: जी। लेकिन आज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कजरी आप सुना रही हैं वो ये नहीं है कुछ?
0: नहीं, ये तो बहुत सुनने में आती है, मुझे लगा कि एक दूसरी कजरी आपको सुनाऊं। बिन सांवरे पियरवा जीव की जरन न जाए, जिया नहीं बहलत प्राण पिया बिन, कीने लाख उपाय, बिन सांवरे पियरवा जीव की जरन न जाए।

0: ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। हमने शुभा जी से कजरी सुनी। शुभा जी, कजरी को लेके मेरे मन में कुछ एक सवाल हैं, लेकिन आज हम यहीं रुकते हैं। श्रोता मित्रों से आज्ञा चाहते हैं और आपसे भी मैं आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

श्रोताओं, श्रावण का ये पावन महीना, प्रत्येक सोमवार बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। इसी बीच उज्जैन नगरी पूरी तरह से शिवमय हो चुकी है, तो आइए आज की इस सुखद भोर का स्वागत इस शिव भजन के साथ करते हैं।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम यादों की महफिल, आप सुनेंगे 12:05 पर कार्यक्रम सुरीला सफ़र, आप सुनेंगे 1:00 फिल्म संगीत, आप सुनेंगे 2:00 2:30 पर सदाबहार नगमे सुने जा सकेंगे।

3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 4 बजे सुनिए आज के मेहमान। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का प्रोग्राम युववाणी।

शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा माटीरी बात, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे रात 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 13 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें मध्य प्रदेश के भैरव सिंह चौहान को वर्ष 2025 के लिए लोक संगीत की निर्गुणी परंपरा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद जाएंगे। वे गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश प्रस्तावों, उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सरकार के सहयोग पर चर्चा करेंगे। संवाद में विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सहित नए क्षेत्रों में निवेश पर भी चर्चा होगी। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप और निवेशक तथा उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। उन्होंने लोगों से सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और अपने परिवेश में हरियाली बढ़ाकर इस त्यौहार को प्रकृति का उत्सव बनाने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंती भाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी संवाददाताओं को जानकारी दी।
2: पहले जहाँ हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा की कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू, इंदौर आबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में शामिल है, भोपाल से सरजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है, और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR

0: ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने हेमू कलानी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री शुक्ल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और तिरंगा यात्राएं लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेंगी। इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में भी तिरंगा यात्रा रैली और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नीमच में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर और राजेंद्र शुक्ल रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को भूमि के 4 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल की करोंद कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन और हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि सुरक्षित रखने की भी अपील की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है। उन्होंने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और खरगोन सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। प्रभावित जिलों में कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है जबकि खरगोन में अपर वेदा बांध के गेट खोले गए हैं और कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और खंडवा जिले में पुलिसकर्मियों ने अब तेज बाढ़ के बीच में बहाव में फंसे एक दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला है।
2: बारिश का समय है, ऐसे समय में जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में जहां जहां अभी फंसे थे, रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है।
1: अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में झाबुआ की आकांक्षा अभियान के तहत 62 अधिकारियों द्वारा 146 शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 62.5% मिलने पर कलेक्टर ने उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा के ग्राम सरईमाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत बांझ निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 134 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कटनी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत में आयोजित कुकिंग कॉम्पिटिशन में 25 स्वसहायता समूहों ने भाग लिया। पन्ना जिले के सरकुहा गांव में पट्टा खदान में काम के दौरान मजदूरों को 16.96 कैरेट का अत्यंत दुर्लभ जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और इंदौर जिले के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राला मंडल में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर 150 आपदा मित्रों को आपातकालीन स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। और प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की उन अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, उज्जैन अपनी अनूठी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। शहर के बड़े गणेश मंदिर में इस बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से चार दिन पहले 11 अगस्त को ही मनाया गया। मंदिर में अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख के बजाय हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा है। इस बार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी 11 अगस्त को होने के कारण मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। तिरंगे के रंगों से सजे मंदिर परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, ध्वज पूजन किया गया और गणेश पूजन के बाद महाआरती हुई तथा मंदिर के शिखर पर तिरंगा फहराया गया। आज़ादी के समय से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के साथ चलिए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। चलिए आपको आज के अखबारों की सुर्खियों से परिचित करवाते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीएलसी चरण घोषित हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त तक तय की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को एक और अवसर देते हुए अतिरिक्त सीएलसी चरण घोषित किया है। इसमें विद्यार्थी 14 अगस्त तक महाविद्यालयों में केवल रिक्त सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे। प्रवेश का ये अंतिम चरण है। तारीख बढ़ने से उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा जो पात्रता प्रमाण पत्र के कारण एडमिशन के लिए भटक रहे थे। प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलेगा। अगली खबर है रेलों से संबंधित। 4 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को बदलने की सूचना निरस्त कर दी गई है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा उज्जैन स्टेशन पर 4 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया 11 अगस्त से प्रस्तावित प्लेटफॉर्म परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा और सभी ट्रेनों का संचालन उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पूर्ववत निर्धारित प्लेटफॉर्मों से ही किया जाएगा। अगली खबर मौसम की। दिन में फुहारे, रात 11:30 पर शहर में तेज बारिश शुरू हुई। शहर में सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद मंगलवार को दिन में कई बार फुहारों के अलावा बूंदाबांदी होती रही। वहीं रात करीब 11:30 पर तेज बारिश शुरू हो गई। रात करीब 1 बजे तक रुक रुक कर रिमझिम और तेज बारिश का सिलसिला चलता रहा। शासकीय जीवाजी वेदशाला में मंगलवार शाम तक बीते 24 घंटे के भीतर 0.16 इंच बारिश दर्ज की गई। अब तक कुल 23.32 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मंगलवार को पूरे दिन घने बादल छाए रहे और दिनभर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलती रही। अगली खबर सेहत संबंधित। सेहत के लिए आज भी करवाएंगे स्वर्ण प्राशन। बारिश में वायरल बीमारियों और पाचन संबंधित परेशानियों के बढ़ने के बीच धाकड़ औषधालय फ्रीगंज पर पुष्य नक्षत्र में तैयार किया गया स्वर्ण पाशन एवं स्वर्ण कल्प बुधवार को भी सेवन कराया जाएगा। ये सुबह 11 से रात 8 बजे तक चलेगा। वहीं मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में 79 बड़े एवं बच्चों को स्वर्ण कल्प और स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। आयोजन में बच्चों और बड़े सभी के लिए प्रशिक्षण और परामर्श नाड़ी वैद्य डॉक्टर हर्षवर्धन धाकड़ द्वारा दिया जाएगा। शहीदों को समर्पित लेफ्ट हैंडर्स दिवस कल मनेगा। लेफ्टी क्लब वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त वीर शहीदों को समर्पित रहेगा। लेफ्टी क्लब समन्वयक मनोहर रांगी ने बताया इस दिन संरक्षक दिनेश जैन, हाईकमान दिनेश दिग्गज व संयोजक अजीत पोरवाल के सानिध्य में अखंड ज्योति हनुमान मंदिर फ्रीगंज में अभिषेक पूजन तथा शहीद पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। महाकाल लोक में गायन वादन और नृत्य प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध। आज देवयानी सिंह गोड़ की नृत्य प्रस्तुति और शांतिलाल समूह का गायन होगा। राजसी सवारी से पहले कंठाल से छतरी चौक तक मार्ग का चौड़ीकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महाकाल की राजसी सवारी से पहले सवारी मार्ग के शेष चौड़ीकरण और निर्माण कार्य पूरे करने के लिए निगम आयुक्त ने मंगलवार सुबह कंठाल चौराहा से सती गेट होते हुए छतरी चौक तक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बचे काम में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मार्ग पर करीब 75 मीटर पीक्यूसी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 310 मीटर सड़क का निर्माण अभी बाकी है। आयुक्त ने सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा और सरफेस फिनिशिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं महापौर ने वार्ड क्रमांक 1 व 2 का निरीक्षण किया है। महापौर मुकेश टटवाल ने मंगलवार को वार्ड 1 और 2 का निरीक्षण कर नगर निगम के विकास और स्वच्छता कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने नागरिकों से बातचीत कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 स्थित मालवीय समाज धर्मशाला से हुई। यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल का उपयोग बंद किया गया है। अगली खबर महाकाल लोक की तर्ज पर 120.40 करोड़ से संवरेगा शनि मंदिर। इसी माह तय होगी एजेंसी। 23,600 वर्ग फीट क्षेत्र में होगा निर्माण।

पर्व व स्नान के दिन हजारों श्रद्धालु कर सकेंगे सुगम दर्शन। महाकाल लोक की तर्ज पर अब त्रिवेणी घाट स्थित नवग्रह शनि मंदिर भी भव्य रूप में दिखाई देगा। मंदिर में शनि लोक के रूप में तैयार किया जाएगा। 120.40 करोड़ रुपए से करीब 23,600 वर्ग मीटर लगभग 5.8 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के लिए कई निर्माण होंगे। इस लोक के लिए UDA ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। आज की खबर में केवल इतना ही। चलिए अब सुप्रभात जैन के अगले गीत की ओर चलते हैं।

श्रोताओं, उज्जैन की खेल प्रतिभाओं ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और शहर का नाम रोशन किया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की छात्रा विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया और सेमीफाइनल में मलेशिया की टीम को पराजित करने के बाद फाइनल में चीन की टीम को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। 25 देशों की टीमों की मौजूदगी वाली इस प्रतियोगिता में उज्जैन की बेटियों का यह प्रदर्शन गौरव का विषय है। दोनों खिलाड़ी 15 अगस्त को उज्जैन लौटेंगी, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। खेल जगत की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ चलिए अब सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला मधुर गीत।

साहस और सूझबूझ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए इंसान को मजबूती देती है। उज्जैन की हेमलता सूर्यवंशी ने इसका प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। शिप्रा नदी के रामघाट पर डूब रही 14 वर्षीय बच्ची को हेमलता ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि उस समय उन्हें स्वयं तैरना नहीं आता था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में आमंत्रित किया गया है। हेमलता ने इससे पहले होमगार्ड की युवा आपदा मित्र ट्रेनिंग ली थी, जिसमें मिली जानकारी और मौके पर सूझबूझ ने उन्हें बच्ची की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश सेवा के लिए उनके जज्बे के साथ अब सुनते हैं आज का अगला मधुर गीत।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

श्रोताओं, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और पारदर्शी भुगतान दिलाने में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की 260 से अधिक कृषि उपज मंडियां अब ई सिस्टम से संचालित हो रही है। उज्जैन मंडी में ऑनलाइन नीलामी पर्ची और इलेक्ट्रॉनिक तोल व्यवस्था लागू होने से भाव और तोल में हेराफेरी की संभावनाएं कम हुई है। भुगतान व्यवस्था में भी पारदर्शिता आई है और बड़ी राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से समय पर खाते में पहुँचाना अनिवार्य किया गया है। ई अनुजा की सुविधा के से व्यापारी मंडी कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन परिवहन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए डाला भरने के नाम पर उपज लेने के बजाय बोरी मजदूरी की व्यवस्था भी लागू की गई है। तकनीक के माध्यम से किसानों के लिए अधिक पारदर्शी मंडी व्यवस्था के संदेश के साथ चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाएं हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रही है। इस वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात को होगा। उज्जैन की जीवाजी वेदशाला के अनुसार भारतीय मानक समय से ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 पर होगी और मोक्ष की स्थिति 13 अगस्त की रात 1:27 पर होगी। कुल अवधि करीब 4:31 रहेगी। भारत में उस समय रात होने के कारण यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जबकि पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा आसपास के महासागरीय क्षेत्र में इसे देखा जा सकेगा। विज्ञान और खगोल की इस रोचक जानकारी के साथ चलिए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: इसी के साथ आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारित सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है।

0: ऑनर्स के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीमान रविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्रीमान रविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
4: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर त्रिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी त्रिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
5: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
5: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1950. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Yarzu, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar Tiranga campaign. Vice President C.P. Radhakrishnan will flag off the Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in New Delhi in a short while. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to celebrate the Independence Day with honor, pride and glory and take a pledge for a developed India. In a video message posted on Instagram, Mr. Modi urged people to hoist the national flag at every home as part of the Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga, Har Man Tiranga campaign. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandviya flagged off a Har Ghar Tiranga cycle yatra at Major Dhyan Chand Stadium this morning. Mr. Mandviya led the rally with My Bharat volunteers of Delhi University. Talking to media, Mr. Mandviya said that more than 1,000 My Bharat volunteers have conveyed the message of fitness to the nation through the rally. He highlighted the benefits of cycling for any nation to become a developed nation.
6: In Delhi, more than 1,000 My Bharat volunteers conveyed the message of fitness through the Har Ghar Tiranga cycling yatra. If a nation aspires to become a developed nation, it is essential for its citizens to remain healthy. Cycling promotes fitness and helps combat pollution. Cycling is also a solution to traffic congestion.
7: Cycling traffic ka samadhan bhi hai.
4: In Jammu and Kashmir, a mega Tiranga Yatra was held today on Boulevard Road along the banks of the famous Dal Lake in Srinagar. Lieutenant Governor Manoj Sinha led the rally, in which thousands of students, government employees, security personnel and people from different sections of society participated. The participants carried the tricolour and sang patriotic songs along the route. The J&K police band performed the national anthem and other patriotic songs during the rally. The JPSC-JSSC aspirants protest in Jharkhand has entered its 19th day, with students continuing their hunger strike and demanding action over the alleged examination irregularities. Tension rose after a late-night visit by the district administration to the protest site in Ranchi. Here is a report.
8: The students held a silent march last evening and said the march was intended to highlight their demands in a peaceful and democratic manner. Later, a team of district administration officials visited the protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium and spoke to those sitting on hunger strike. Student leaders said the administration sought details of

श्रोताओं, भारत की स्वतंत्रता की कहानी केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या झांसी जैसे बड़े केंद्रों की कहानी ही नहीं, देश के मध्य भाग में स्थित हमारे मालवा ने भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। और आज का ये कार्यक्रम आपको ऐसे ही कुछ पहलुओं से रूबरू करवाने के लिए है कि भारत की स्वतंत्रता में मालवा की भूमिका क्या रही। यहाँ प्रतिरोध का स्वरूप समय के साथ बदलता गया। कहीं सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया, कहीं आदिवासी समुदायों ने जंगलों और पहाड़ियों से चुनौती दी, कहीं रियासतों की प्रजा ने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, तो कहीं गांधी जी के सत्याग्रह, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन ने सामान्य नागरिकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ दिया। मालवा का भौगोलिक महत्व भी इसके राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करता रहा। उज्जैन सदियों से उत्तर भारत, दक्कन और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित रहा। ब्रिटिश काल में भी उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर और मऊ जैसे केंद्र व्यापार, संचार और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। यही कारण था कि जब देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ा तो मालवा भी उससे अछूता नहीं रहा। उज्जैन के इतिहास के अनुसार शहर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व्यापारिक मार्गों के महत्वपूर्ण संगम पर था, जबकि नीमच ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। आगे की कहानी भी हम जारी रखेंगे, लेकिन चलिए भारत देश के उन वीर सपूतों को एक ये सुंदर सा गीत समर्पित करते हैं।

श्रोताओं, वर्ष 1857 भारतीय इतिहास का वो वर्ष जब अंग्रेजी सत्ता की नींव को पहली बार देश के अनेक हिस्सों में एक साथ चुनौती मिली। मालवा भी इस ज्वाला से अछूता नहीं रहा। नीमच की छावनी में भारतीय सैनिकों का विद्रोह शुरू हो गया। इंदौर में भी असंतोष की लहरें उठने लगी। मंदसौर में भी आंदोलन शुरू हो गए। धार और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय विद्रोह शुरू हुआ। इन घटनाओं ने बता दिया था कि आज़ादी की इच्छा अब केवल मन की बात नहीं रही, वो प्रतिरोध का रूप ले चुकी थी। सैनिक आगे बढ़ रहे थे, स्थानीय लोग साथ आ रहे थे और अंग्रेजी सत्ता पहली बार अपने ही बनाए तंत्र में बेचैनी महसूस कर रही थी। 1857 की उस पहली बड़ी लहर को याद करते हुए चलिए सुनते हैं कैसा गीत जिसमें विद्रोह की वही हुंकार महसूस होती है।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां।
2: 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा, राजस्व व्यवस्था कड़ी हुई और जंगल, जमीन तथा प्राकृतिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया। इसका सबसे गहरा असर उन समुदायों पर पड़ा जिनका जीवन जंगल, जमीन और स्थानीय संसाधनों से जुड़ा हुआ था। मालवा से जुड़े निमाड़ क्षेत्र में भील और अन्य आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उनके लिए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल नहीं था, ये उनकी जमीन, जंगल, आजीविका, परंपरा और सम्मान से जुड़ा प्रश्न था। इसी दौर में भीमा नायक का नाम सामने आता है। भारत सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े आधिकारिक अभिलेखों में भीमा नायक को निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौर में भील, भिलाला, मंडोई और नायक समुदायों के लोगों को संगठित किया। उनका संबंध तात्या टोपे के संघर्ष से भी बताया जाता है। कल्पना कीजिए, एक ओर अंग्रेजों की संगठित सेना और दूसरी ओर जंगलों, पहाड़ियों और स्थानीय भूगोल से परिचित आदिवासी योद्धा। ये संघर्ष किसी बड़े मैदान में लड़ी गई नियमित लड़ाई नहीं था, ये अपने क्षेत्र और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध था। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले नामों में टंट्या भील का नाम विशेष रूप से याद किया जाता है। टंट्या भील ने लंबे समय तक अंग्रेजी सत्ता और उसके सहयोगी तंत्र को चुनौती दी। उनकी गुरिल्ला शैली की गतिविधियों और गरीबों के प्रति उनकी लोकप्रियता ने उन्हें आम लोगों के बीच एक अलग पहचान दी। लोग उन्हें सम्मान से टंट्या मामा कहने लगे। टंट्या मामा की कहानी इसी बात का प्रमाण है कि 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ था। वो कभी छावनी में था, कभी गांव में, कभी जंगल में और कभी किसी सामान्य नागरिक की आवाज़ में। आइए मालवा निमाड़ के उन अनाम और ज्ञान ज्ञात अज्ञात योद्धाओं को याद कर

0: ड्रेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
1: 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
3: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक आते आते भारत में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे नई दिशा लेने लगी थी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अब केवल हथियारों और स्थानीय विद्रोहों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ राजनीतिक संगठन और जन जागरण का नया दौर शुरू हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विचार देश में फैलने लगे। मालवा भी इस बदलाव का हिस्सा बना। इंदौर व्यापार और उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन व्यापार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की गतिविधियों का केंद्र रहा। रतलाम और नीमच जैसे क्षेत्र रेल और सैन्य संपर्कों के कारण देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ते थे। इस संपर्क ने राष्ट्रीय विचारों के प्रसार को गति दी। अखबार लाने लगे, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ी जाने लगी, राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों और विचारों की चर्चा होने लगी, सार्वजनिक सभाएं राजनीतिक चेतना का माध्यम बनी। अब आज़ादी की लड़ाई का अर्थ केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं था, लोगों के बीच ये सवाल भी उठने लगा था कि भारत का शासन भारतीयों के हाथों में क्यों नहीं है, भारतीयों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार क्यों न मिले। और फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने संघर्ष की भाषा ही बदल दी, पूज्य महात्मा गांधी। गांधी जी के ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से सामान्य नागरिक को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने का रास्ता दिखाया। अब स्वतंत्रता की लड़ाई में हर व्यक्ति की भूमिका हो सकती थी। किसी के हाथ में तलवार न हो फिर भी वह आंदोलन का हिस्सा बन सकता था। किसी के पास राजनीतिक पद न हो फिर भी वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकता था। किसी के पास बड़ी संपत्ति न हो फिर भी वह स्वदेशी का संदेश दे सकता था। यही वो परिवर्तन था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को अभिजात वर्ग से निकालकर जन जन तक पहुंचाना शुरू किया। आइए उस जागते हुए भारत की आवाज को समर्पित इस गीत को सुनते हैं।

वर्ष 1920, देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाना, सरकारी संस्थाओं से दूरी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, इन सब ने स्वतंत्रता आंदोलन को नया जनाधार दिया। मालवा में भी राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ। शहरों में सभाएं होने लगी, राजनीतिक कार्यकर्ता लोगों से संवाद करने लगे, व्यापारी वर्ग के बीच स्वदेशी और बहिष्कार की चर्चा बढ़ी, विद्यार्थी और युवा राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होने लगे। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक नेताओं की गतिविधि नहीं बल्कि सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ने लगा था। कपड़ा खरीदने से लेकर सार्वजनिक सभा में जाने तक, शिक्षा से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक, रोजमर्रा के कई निर्णयों में राष्ट्रीय भावना दिखाई देने लगी। इस दौर में पत्रकारिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन की नीतियों, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वदेशी के विचारों को जनता तक पहुँचाया। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय प्रश्नों से जोड़ा गया। मालवा में भी शब्दों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। एक लेख किसी विद्यार्थी को प्रेरित करता था, एक कविता किसी सभा में उत्साह पैदा करती थी, एक समाचार किसी कस्बे को देश भर में चल रहे आंदोलन से जोड़ देता था। इस तरह आंदोलन की आवाज़ धीरे धीरे हर दिशा में फैल रही थी। चलिए सुनते हैं उसी जागरण और जनभागीदारी की भावना को समर्पित अगला गीत।

दोस्तों, मालवा की स्वतंत्रता यात्रा को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, देशी रियासतों की प्रजा का संघर्ष। मालवा का बड़ा हिस्सा सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन नहीं था। यहाँ होलकर राज्य, रतलाम, देवास, धार, जावरा और अन्य रियासतें थीं। इन रियासतों की अपनी शासन व्यवस्थाएं थीं, लेकिन आम जनता के सामने कई तरह की राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी थीं। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का अर्थ थोड़ा व्यापक हो गया। लोग अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति चाहते थे, लेकिन साथ ही वे अपनी रियासतों में भी उत्तरदायी शासन, नागरिक अधिकार और प्रशासन में भागीदारी चाहते थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन और प्रजा आंदोलनों के बीच संबंध मजबूत होने लगे। जनता के बीच ये विचार मजबूत होता गया कि शासन का अंतिम उद्देश्य जनता का हित होना चाहिए और जनता को शासन में अपनी आवाज़ मिलनी चाहिए। यही भावना आगे चलकर लोकतांत्रिक भारत की बुनियाद बनी। इसलिए मालवा की स्वतंत्रता गाथा में दो धाराएं साथ साथ दिखाई देती है, एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ता के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष और दूसरी देशी रियासतों में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष। दोनों की मंजिल अंततः एक ही थी, एक ऐसा भारत जहाँ जनता अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करे। इसी जन अधिकार और स्वाभिमान की भावना के साथ चलिए सुनते हैं अगला देशभक्ति का मधुर गीत।

और फिर आया वो दिन जिसका इंतज़ार पीढ़ियों ने किया था। 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ। एक ऐसा सपना जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया था, वो सपना साकार हुआ। मालवा की धरती भी इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। नीमच की छावनी से उठी 1857 की विद्रोही आवाज़ से लेकर निमाड़ के जंगलों में गूंजते प्रतिरोध तक, असहयोग के स्वदेशी अभियानों से लेकर सविनय अवज्ञा के सत्याग्रह तक और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन तक, लगभग 9 दशकों का ये सफ़र अनेक पड़ावों से होकर गुजरा। इस यात्रा में कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए, कुछ नाम स्थानीय स्मृतियों में बचे रहे और कुछ ऐसे भी रहे जिनका नाम शायद कभी दर्ज नहीं हुआ। लेकिन स्वतंत्रता की कहानी में उनका योगदान कम नहीं था। किसी ने आंदोलन में भाग लिया, किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने जेल यात्रा की, किसी ने स्वदेशी अपनाया, किसी ने राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ाया, किसी ने जंगलों में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और किसी ने अपनी कलम से लोगों के मन में आज़ादी का विचार जगाया। इन सबके योगदान से मिलकर बनी स्वतंत्र भारत की सुबह। आइए उस ऐतिहासिक सुबह को नमन करते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

तो चलिए दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो पहली मुलाकात में दिल में उतर जाने वाले प्यार के एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। कभी कभी एक नज़र ही दिल की दुनिया बदल देती है और किसी अनजान शख्स को अपना सा बना देती है। फिल्म रेस का यह गीत आतिफ असलम की दिलकश आवाज़ और प्रीतम के मधुर संगीत से सजा हुआ है, तो चलिए महसूस करते हैं उसी अंदाज़ को।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कभी दिल की धड़कनें खुद से सवाल करने लगती है और समझ नहीं आता कि आखिर ये दिल इतना बेचैन क्यों है। फिल्म काइट्स का ये गीत प्यार की इसी अनकही हलचल को खूबसूरत सुरों में ढालता है। केके की मखमली आवाज़ और राजेश रोशन का संगीत इस गीत को बेहद खास बना देता है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा नगमा।

0: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम।
4: कुछ रिश्तों की शुरुआत कब और कैसे होती है इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता। बस एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस होता है जो धीरे धीरे दिल के बेहद करीब आ जाता है। फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत इसी खूबसूरत जुड़ाव की कहानी कहता है। अरिजीत सिंह की भावपूर्ण आवाज़ और प्रीतम का संगीत इस गीत को यादगार बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

बॉलीवुड बीट्स में अब पेश है एक ऐसा गीत जो भीतर छिपी भावनाओं, उम्मीद और जिंदगी के अनकहे पहलुओं को आवाज देता है। फिल्म अग्निपथ का ये गीत बेहद संवेदनशील है। सोनू निगम की भावपूर्ण आवाज और अजय अतुल का संगीत इस अनुभूति को और गहरा बना देता है। तो चलिए महसूस करते हैं उसी अनुभूति को।

तो दोस्तों आज के बॉलीवुड बीट्स में यानी सुरों के सफर में चलिए अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। अब बॉलीवुड बीट्स में बारी है एक ऐसे गीत की जो प्यार, भरोसे और किसी खास इंसान के साथ की अहमियत को बेहद खूबसूरती से सामने लाता है। फिल्म एयरलिफ्ट का ये गीत बताता है कि किसी अपने का साथ जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी आसान बना सकता है। अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और अरमान मलिक की आवाज़ें और अमाल मलिक का संगीत इस गीत को भावनाओं से भर देता है। तो चलिए सुनते हैं यही सुंदर सा गीत।

इसी के साथ आज का बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। फिर मुलाकात होगी नए गीतों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है उज्जैन दर्शन का।

श्रोताओं, भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना अपने साथ भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। और जब बात उज्जैन की हो तो सावन का अर्थ ही बाबा महाकाल की भक्ति में डूब जाना है। देशभर से श्रद्धालु यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा होती है भोर में होने वाली भस्म आरती के दिव्य दर्शन। सावन में सोमवार को रात 2:30 बजे और मंगलवार से रविवार तक तड़के 3 बजे बाबा महाकाल को जगाया जाता है। भस्म आरती का वास्तविक नाम मंगला आरती है, लेकिन भगवान को भस्म अर्पित किए जाने के कारण ये भस्म आरती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस आराधना में एक अद्भुत आध्यात्मिक भाव छिपा है। भस्म अर्पित होने तक बाबा महाकाल निराकार स्वरूप में रहते हैं और इसके बाद उनकी राजसी श्रृंगार किया जाता है। भस्म हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराती है और शिव हमें उस सत्य को स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। आइए शिवमय भाव के साथ सुनते हैं बाबा महाकाल की महिमा को समर्पित ये पहला भजन।

उज्जैन की गलियों में भगवान महाकाल केवल एक आराध्य देव नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजे जाते हैं। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का संबंध केवल मंदिर की पूजा तक सीमित नहीं है, बाबा महाकाल के लिए तैयार होने वाले भोग में भी उज्जैन वासियों की श्रद्धा और अपनापन दिखाई देता है। भस्म आरती की तैयारी एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल के भोग के लिए भिक्षा भी मांगी जाती है। पुजारी परिवार की ओर से नियुक्त व्यक्ति शाम के समय पीतल की बड़ी थाली लेकर शहर के अनेक दुकानों पर जाता है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद, फूल, दूध, मिठाई, फल, पान और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। अलग अलग लोगों से एकत्र की गई इस सामग्री को प्रेम से भगवान का कंड्या कहा जाता है। अगले दिन इसी श्रद्धा से जुटी सामग्री बाबा महाकाल को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए अर्पित वस्तु की कीमत नहीं, उसमें समाया भाव महत्वपूर्ण होता है। मुट्ठी भर फूल हो या एक छोटा सा प्रसाद, सच्ची श्रद्धा से अर्पित हर वस्तु शिव तक पहुंचती है। आइए इसी भक्ति भाव को अपने मन में उतारते हुए सुनते हैं उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का अगला भजन।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
2: शिव का स्वरूप अपने आप में एक दर्शन है। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, महादेव का हर स्वरूप मनुष्य को जीवन का कोई ना कोई सत्य समझाता है। उज्जैन के बाबा महाकाल की भस्म आरती इसी शिव दर्शन को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर देती है। भस्म आरती के लिए आवश्यक भस्म की तैयारी एक दिन पहले की जाती है। भस्म कक्ष में कंडों पर कर्पूर रखकर धुनी प्रज्वलित की जाती है। अगले दिन अभिषेक और पूजन की विधि विधियों के बाद बाबा

महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है। इसके बाद उनका राजसी श्रृंगार होता है। रुद्राक्ष, बेलपत्र, आभूषण और अन्य पूजन सामग्री से बाबा का दिव्य स्वरूप निखर उठता है। शिव के शरीर पर लगी भस्म हमें यह संदेश देती है कि संसार का वैभव और शरीर सब नश्वर है। जो आज है वो कल भस्म हो जाना है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता हो, संग्रह नहीं, सेवा हो और मोह नहीं, महादेव की भक्ति हो। सावन का महीना इसी आत्मबोध का अवसर है। आइए मन के अहंकार को त्याग कर बाबा महाकाल की शरण में चलें और सुने ये शिवमय भजन।

सावन में उज्जैन का हर रास्ता महाकाल की ओर जाता दिखाई देता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सड़कों पर गूंजता हर हर महादेव और भक्ति में डूबे चेहरे, पूरी नगरी शिवमय हो जाती है। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इन सोमवारों को बाबा महाकाल भी उपवास रखते हैं। सोमवार की सुबह भगवान को नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाता और शाम को सवारी से लौटने के बाद ही नैवेद्य लगाया जाता है। महाकाल की पूजा में प्रकृति भी सहभागी बनती है। रोजाना बड़ी मात्रा में श्रद्धालु भगवान को फूल अर्पित करते हैं। पूजा के बाद इन फूलों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। इन्हीं अर्पित पुष्पों से धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप और अष्टगंध तैयार किए जाते हैं। ये परंपरा अपने आप में एक सुंदर संदेश देती है। भक्ति केवल भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करने का नाम नहीं, बल्कि उस अर्पण को सेवा में बदल देने का नाम भी है। सावन हमें सिखाता है कि शिव को पाने का मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और सेवा से होकर जाता है। तो आइए इसी पवित्र भाव के साथ बाबा महाकाल के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और सुनते हैं आज के उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का अंतिम भजन।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी दोस्त काजल। आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सखियों, एक तरफ जहां सावन की झड़ी में हरी धरती हरी चादर ओढ़कर हरियाली अमावस्या मना रही है, जिसमें मान्यता है कि पौधा लगाना पुण्य देता है, वहीं दूसरी तरफ आज विश्व हाथी दिवस भी है, जो हमें हाथियों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन की याद दिलाता है। और इन सब के साथ आज का दिन समर्पित है उस ऊर्जा को जो समाज में बदलाव लाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट प्रियांशी प्रजापत जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी सुंदर गीत के साथ।

सखियों, आज 12 अगस्त है और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी। कनाडा की एक फिल्म मेकर पेट्रिशिया सीम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने मिलकर सोचा कि अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद हाथियों को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी। अब सवाल ये है कि ये दिन इतना ज़रूरी क्यों है? पहला कारण है उनकी सुरक्षा। आज भी हाथी के दांतों के अवैध व्यापार के लिए शिकारियों द्वारा हाथियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह दिन उस तस्करी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देता है। दूसरा कारण है उनका छिनता हुआ घर। सड़कें, इमारतें और घटते जंगल हाथियों के रहने की जगह लगातार कम हो रही है। जब जंगलों में खाना पानी नहीं मिलता तो वे मजबूरी में खेतों और गांवों का रुख करते हैं, जिससे इंसान और हाथी दोनों को नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण संतुलन। हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं, जंगल के इंजीनियर हैं। जब वे जंगल में घूमते हैं तो नए पेड़ पौधों के बीज फैलाते हैं और छोटे जीवों के लिए रास्ता बनाते हैं। यानी हाथी सुरक्षित रहेंगे तभी हमारे जंगल बचेंगे। सखियो, हाथी बचेगा तो जंगल भी बचेगा, और जंगल बचेगा तो हमारा पानी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आइए इस विश्व हाथी दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जी

सखियों, जब बात आती है एक सुरक्षित भविष्य गढ़ने की, तो इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनती है हमारी युवा शक्ति। आज 12 अगस्त 2026 को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस साल की थीम बेहद खास है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, अलग अलग परिस्थितियां साझी आकांक्षाएं, जो बात करती हैं ग्लोबल सॉलिडारिटी यानी वैश्विक एकजुटता, साझी चुनौतियों और यूथ इनोवेशन की, यानी अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले हमारे युवा किस तरह अपने जज्बे और इनोवेशन से एक नया इतिहास रच सकते हैं। और इसी युवा जज्बे, मेहनत और देश का नाम रोशन करने वाले जुनून की जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। सखियों, मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज महिला सभा में हम चर्चा करेंगे रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट प्रियांशी प्रजापत जी से, जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भारत का तिरंगा फहराया है। वियतनाम में आयोजित एशियन चैंपियनशिप

चैंपियनशिप टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है बल्कि अपनी इस स्वर्णिम उपलब्धि से पूरे प्रदेश और देश की बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है। हम चर्चा करेंगे उनसे इस गीत के बाद।

0: सखियो चर्चा करेंगे हम प्रियांशी जी से। वियतनाम से पहले भी इन्होंने कई मेडल अपने नाम किए हैं, जैसे बल्गारिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल, जॉर्डन में एशियन चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल और अल्बानिया में हुई UWW रैंकिंग सीरीज में भी सिल्वर मेडल। इनकी इसी शानदार मेहनत और उपलब्धियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान एकलव्य पुरस्कार से भी नवाजा है। अपनी इसी खेल प्रतिभा के दम पर वे पुलिस में सेवा भी दे रही हैं और हमारी लाखों बेटियों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं प्रियांशी जी की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत। और पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आज देश का हर युवा आपकी इस कामयाबी को देखकर फक्र महसूस कर रहा है, लेकिन हर बड़ी मंजिल के पीछे एक छोटी सी शुरुआत होती है। हम जानना चाहते हैं कि उज्जैन की इस छोटी सी बच्ची के मन में पहलवान बनने का पहला ख्याल कैसे आया, आपको कुश्ती की दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली।
1: सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रियांशी प्रजापत, कुश्ती खिलाड़ी, आपके उज्जैन शहर की बेटी, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह जानकर बहुत गर्व होता है कि देश का युवा मुझे प्रेरणा मानता है। जैसे कि आपने कहा कि हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक छोटी चीज से होती है, तो वह छोटी चीज मेरे लिए मेरे शहर की, मेरे अखाड़े की मिट्टी बनी, जिसने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचने का हौसला दिया। मैंने अपने कुश्ती करियर की शुरुआत 11 साल की उम्र में की थी। मेरे पापा पहलवान थे, उन्होंने ही मुझे कुश्ती की शुरुआत करवाई। वो चाहते थे कि वो जो कुछ अचीव नहीं कर पाए वो उन्होंने हमारे अंदर देखा, हम अचीव करें। तो मेरे पापा ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है लाइफ में भी, रेसलिंग में भी। उन्होंने हमें कुश्ती की शुरुआत कराई और आज भी मेरे पापा ही मुझे काफी उनकी बातें और सब कुछ बहुत इंस्पायर करता है और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है।
0: जैसा कि हम जानते हैं कि कुश्ती सिर्फ मैट पर ताकत दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि मैट से बाहर अपनी डाइट, वजन और माइंडसेट को कंट्रोल करने की लड़ाई भी है। अब ऐसे में कभी कभी मानसिक तनाव भी होता होगा। वेट कैटेगरी में बने रहने के लिए डाइट फॉलो करना और रोज खुद को मेंटली और फिजिकली उसी पीक फिटनेस पर रखना कितना मुश्किल होता है, इस अनुशासन को बनाए रखने का आपका क्या फॉर्मूला है?
1: आपने बिल्कुल सही बात कही। लोग सिर्फ 6 मिनट का मुकाबला देखते हैं, लेकिन उस 6 मिनट के लिए महीनों तक 24 घंटों खुद से लड़ना पड़ता है। कुश्ती में सिर्फ विरोधी को नहीं, अपनी भूख, थकावट और अपने मन को भी हराना पड़ता है। वेट कैटेगरी में बने रहने के लिए जब आप कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं तो शरीर के साथ साथ दिमाग भी थकने लगता है। चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव होना ये नॉर्मल ही है। मैं पूरे महीने का सोचकर नहीं, बस आज के दिन का टारगेट पूरा करती हूँ। जब डाइट मुश्किल होती है तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि यह भूख मुझे उस गोल्ड मेडल तक लेके जाएगी, शायद जो मेरा ड्रीम है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मैं अपना मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करना ज्यादा पसंद करती हूँ, या अपने फैमिली मेंबर्स लाइक माय सिस्टर या फादर जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं अपने लक्ष्य के लिए कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरे टाइम मोटिवेट नहीं रह सकते, तो उनका कोई फैमिली मेंबर, कोई खास दोस्त जिससे वो बात करके या मेडिटेशन करके, सबका अलग अलग तरीका होता है, वो ऐसे कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक बात ये भी होती है कि खेल में कभी कभी परिस्थितियां हमारे हक में नहीं होती है, पर एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान यही है कि वो गिरकर उठना जानता है। उस दबाव वाले पल में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखना और दोबारा बाउट में उतरना, ये मेंटल फिट टफनेस आप में कहां से आती है?
1: ये बहुत ही गहरा सवाल है। सच कहूं तो मेंटल टफनेस, रोज गिरना, गिरकर उठना, प्रैक्टिस करना, हारना, इसे हम एक दिन में नहीं सीख सकते। यह ताकत मुझे उस मिट्टी से मिली है जहां से मैंने कुश्ती की शुरुआत की थी। अखाड़े का पहला नियम यही होता है कि अगर गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे। जब परिस्थितियां हमारे हक में नहीं होती है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हमारे ऊपर, तब मैं अपनी पुरानी हार और पुराने संघर्षों को याद करती हूँ। मुझे याद आता है कि मैंने यहाँ तक सफर कैसे तय किया है, कितनी मुश्किलों को पार करके यहाँ तक मैं आई हूँ, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। जब आपके पीछे अपनों की उम्मीदें और पूरे देश का भरोसा होता है तो आपको आपका मन टूटने की इजाजत नहीं देता। गिरना एक एथलीट के कैरियर का हिस्सा है, हारना जीतना दो सिक्के के पहलू की तरह है, लेकिन खेलना, डटकर लड़ना, अपना 100% देना, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन गिरकर वही रहना, ये एक अच्छी खिलाड़ी की फितरत में नहीं होता।
0: प्रियांशी जी, चाहे वियतनाम में ऐतिहासिक गोल्ड जीतना हो या सीनियर नेशनल में परचम लहराना, आपकी इन्हीं शानदार उपलब्धियों की बदौलत आज आप पुलिस सेवा का हिस्सा भी बनी हैं। प्रियांशी जी, खेल के मैदान से निकलकर पुलिस की वर्दी तक पहुंचने के इस सफर में आपके दिल के सबसे करीब और गर्व महसूस कराने वाला पल कौन सा है? और अब एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी संभालते हुए आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए आपकी क्या तैयारी है?
1: मेरे इस पूरे सफर में वियतनाम में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना और उस जीत के बाद विदेशी धरती पर अपने तिरंगे को सबसे ऊपर लहराते देखना तथा राष्ट्रगान का गूंजना मेरे दिल के सबसे करीब और सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराने वाला पल है। इसके साथ ही मैं एज ए इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। वो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक से 2025 में सम्मानित भी किया गया। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक गौरव का पल था। मैं एक छोटे से अखाड़े से निकलकर पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का गर्व शब्दों में बयान नहीं कर सकती।

0: एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी को संभालते हुए देश के लिए पदक जीतना अब मेरा दोहरा कर्तव्य बन चुका है। आगे आने वाली प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गति और स्टैमिना बनाए रखने के लिए एडवांस मैट प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपनी रेसलिंग को मजबूत करने पर मैं स्पेशल ध्यान दे रही हूँ। मेरा लक्ष्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय पोडियम पर भारत का ध्वज लहराना है, ताकि मेरे परिवार व समाज, मेरे देश, मेरे पुलिस विभागों में और गौरवान्वित कर सकूं।
1: आखिर में आकाशवाणी उज्जैन के इस मंच से युवा दिवस के मौके पर आप देश की उन युवा बालिकाओं और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रेसलिंग या किसी भी खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं?
0: मैं आकाशवाणी उज्जैन के इस प्रतिष्ठित मंच से युवा दिवस के विशेष अवसर पर देश की सभी युवा बेटियों और उनके माता पिता से सीधे दिल की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। पहले मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी कि खेल का मैदान हो या जिंदगी की शुरुआत, हमेशा कठिन ही होती है। पहलवानी है, कोई भी खेल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बना है। आपकी इच्छा शक्ति किसी पुरुष से कम नहीं है। आज खेल सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर है। अगर आप मेहनत करते हैं और अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं तो आपके लिए पुलिस सेवा, रेलवे, आर्मी और अन्य प्रशासनिक पदों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। यह मत सोचिए कि आपके पास सुविधाएं नहीं है। शुरुआत में मेरे पास भी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, रास्ते अपने आप खुद बन जाते हैं। मैं माता पिताओं से भी कुछ कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को बेटों से कम न समझे। जब आप अपनी बेटियों के पीछे चट्टान की तरह खड़े होते हैं तो उसमें पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत होती है। जैसे कि मेरे पिताजी आज मेरे साथ खड़े रहते हैं हर सिचुएशन में, तो मुझे किसी भी सिचुएशन से कभी डर नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे, लड़कियां कुश्ती कैसे लड़ेंगी, जैसी पुरानी सोच को हमें पीछे छोड़ना चाहिए। आज खेल में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। वो साक्षी मलिक हो, वो मीराबाई चानू हो, वो पीवी सिंधु हो या वो सानिया नेहवाल हो, बेटियां आजकल किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। उन्हें सही मार्गदर्शन दें, उनके हुनर को पहचानें, उन्हें अच्छा पोषण, अच्छे कोच दिलाएं। का थोड़ा सा निवेश और अटूट विश्वास उसे एक दिन पुलिस अधिकारी या ओलंपिक चैंपियन बना सकता है। और अगर हम खेलों की बात करें, खेल हमें अनुशासन सिखाता है, मानसिक मजबूती और विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। खेल को एक कठिन रास्ते के रूप में नहीं बल्कि अपने सपनों को सच करने और समाज में अपनी एक सशक्त पहचान बनाने के लिए बेहतरीन माध्यम के रूप में देखें। शुरुआत सबके लिए बहुत कठिन होती है, पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो एक छोटी सी शुरुआत आज मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल और कई अंतर्राष्ट्रीय पदक, कई नेशनल पदक और इंस्पेक्टर की जॉब तक लेके आई है। इसलिए बेटियां आजकल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान दें, उन पर विश्वास करें। थैंक यू।
2: जी बिल्कुल प्रियांशी जी, आज आपसे बात करके काफ़ी कुछ जानने को मिला और यकीनन जो हमारी महिला श्रोता हैं खास करके उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली है आज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी जी, और एक बार फिर आपको ढेरों बधाइयां आपकी तमाम उपलब्धियों के लिए। धन्यवाद।

सखियों, श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन की झड़ी के बीच जब पूरी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, तब यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। सखियों, हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को देवतुल्य माना गया है। हरियाली अमावस्या का यह धार्मिक पर्व दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका महत्व उससे कहीं अधिक है। ऐसा माना जाता है कि पौधे लगाना प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप है। सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि एक माँ की तरह उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करना ही हरियाली अमावस्या का सच्चा संकल्प है। इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब अपनी सहेली काजल को दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी। और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
2: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मैंने कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी, शुरू से
1: जी,
2: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूं और उनको वो चीज़ें मैं दूं। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी
1: जी।
2: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है, जो शुरुआत में नहीं होती
1: जी,
2: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं

0: Morgan Wallbard, needy. You know, yeah, people will be, yeah, wo pichla gana zyada better tha, you know, whatever.
1: Khud se mukabla hota
0: hai. Haan, phir insaan khud se zyada mukabla kar raha hota hai.
1: Ji.
0: To, aur kya hai ki, एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो. लेकिन मैं समझता हूं लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
1: जी,
0: पता नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मैंने वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था
1: जी.
0: आज
1: जी.
0: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था
1: जी,
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए. उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था
1: जी.
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है
1: जी,
0: ये नया गाना इसको थोड़ा वक्त तो दो. अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं
1: जी,
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो. अब जैसे कि एक मजे की बात यह कि एक मेरा गाना है नैन से नैन मिला. अच्छा, जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई,
1: ओ,
0: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट From, for example,
1: what you do normally.
0: हाँ, मतलब कि for example, कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, and then suddenly lift करा दे
1: जी, बारिश,
0: and then suddenly नैन से नैन आ जाता है, जहां पे वो क्लासिकल भी है बीच में, and so on so forth. तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ it become a kind of a cult song. वो बहुत पॉपुलर हो गए, खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में. तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं, और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं. तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला, लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक नैन से नैन
1: जी,
0: क्योंकि नैन से नैन
1: मेरे तो बेशक,
0: हाँ, मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी,
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना गाना था. अच्छा, उसके बाद फिर नैन से नैन आया, तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स. तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था. तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो, इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में. राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है. तो आई वाज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो. तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो, आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पर बंदा करता है, यू नो. तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट,
0: एंड इट वॉज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी.
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस.
1: वाओ.
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया,
0: वो वापस आया, और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर.
1: बिल्कुल.
0: सो मच सो कि फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो.
1: क्या बात.
0: तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स.
1: Yes.
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी,
0: यू नो. तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ.
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी,
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी, और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा?
0: देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था. एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था.
1: इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में.
1: ओह,
0: आई वॉज अ किड इन लंडन.

0: और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे, उनका कॉन्सर्ट था रॉयल अल्बर्ट हॉल में, तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी
0: उसकी
1: बिल्कुल
0: रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं उस कॉन्सर्ट में था। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के, वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे, तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने एक उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग अ फ्यू डेज एज अ हॉलीडे। तो मैं वहां पे गया अपनी वालदा के साथ, तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था, तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था, तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे। तो आशा जी मिली, तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
1: पंचम को
0: ये तो मैं पंचम को मैं बुलाती हूँ,
1: बुलाया
0: ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। आई यूज टू लव आरडी बर्मन, बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहां पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था, लोग अक्सर हीरोज या हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है।
1: वाह वाह वाह
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं
1: बस
0: देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी,
1: वाह
0: मैंने मैंने यादव की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है,
1: हाँ बिल्कुल
0: मुझे समझ नहीं आती, तो ना ही मुझे कोई बताए।
1: जी
0: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं
1: बस
0: देख लूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता है कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी, वो उसमें एक कॉमन DNA था,
1: यस
0: यू नो, सो यू कुड टेल, यू कुड टेल। सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
1: हाँ
0: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज मिजाज का था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है?
1: जी
0: अगर से मतलब कि अच्छा, मैं लियो लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी किसी
1: गुस्ताखी
0: बात
1: कर
0: गुस्ताखी कर दे या फिर
1: दिया
0: शक करे उसकी बात के,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: भी फिर जिद में। मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। देन ही वुड टर्न अराउंड से, हाँ, अगर तुमने बजाया तो वो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। अच्छा, वो भी उनके अंदर भी एक थोड़ा सा बचपना था,
1: जी
0: यू
1: जी
0: नो।
1: जी
0: ही वेंट इन टू द रूम नेक्स्ट डोर एंड ही ब्रॉट आउट अ पोर्टेबल कैसियो।
1: ओ जस्ट टू टेस्ट यू
0: हाँ, मतलब कि उस जमाने में कैसियोज जो थे ना, उनके सबसे नए, मतलब कि नए नए निकले थे कैसियो ब्रांड से, विच वर पोर्टेबल। बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वन।
1: यस
0: अच्छा, वही ब्रॉट आउट अ कैसियो, बजा के दिखाओ।
1: ओ
0: तो मैंने बजा दिया। ही लुक्ड एट मी सर, हाँ तुमने ही बजाया।
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: अच्छा
1: है
0: बजाया,
1: क्या
0: यू
1: बात
0: नो,
1: है,
0: एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो।
1: मतलब वो इतना नायाब था
0: जी जी
1: कि
0: जी जी
1: अनबिलीवेबल हो गया था द
0: हाँ,
1: ग्रेट पंचम के लिए
0: या
1: बिलीव करना कि ये बच्चा जो है
0: बच्चे
1: वो
0: जो
1: इतना शानदार बजा सकता है।
0: हाँ
1: तो
0: करेक्ट।
1: बचपन से आप जादू ही रहे हैं।
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज, कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ।
1: वाह
0: तो मैंने कहा यार, मतलब कि क्या बात है, यू नो, आई वॉज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो देखो, प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं, कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था,
1: जी
0: यू नो। आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रिडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रिडिक्टेड दैट,
1: यस
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज
1: यस
0: डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद याद है मैंने तुम्हें कहा था? एंड
1: वाह
0: मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो, ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली, और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है।
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे
0: ओ
1: इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वॉज वेरी चौली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज टू बी अ वेरी, मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत

0: थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा जबरदस्त था, और एंड शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीजों पे, एंड शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था, अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी।
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया।
0: अच्छा, अब मैं मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना
1: जी,
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार। अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो, ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज की, हाँ सब ठीक ठाक, देन शी वुड स्टॉप क्वाइट। मैं कुछ और मैं बात बोलूँ तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया, ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ, नहीं बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा, हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं देखिए मैं फिर किधर जाऊं
1: जी, जी
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक, यू नो, एंड ऑल दैट, नहीं समय तो मैं नहीं पता, यू नो, जब भी हम नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है
1: जी।
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो, मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन
1: जी।
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया। अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी, शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल। मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट, मैंने पूरा पूरा बताया। अच्छा, वर्षा यूज टू बी रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो, आई इज लाइक दैट ओनली। मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये करके उसने ठक कर दिया। मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है। श्योर इनफ, जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया,
0: मतलब कि इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट।
1: वाओ,
0: शी सडनली बिकेम अ जायंट।
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस
0: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता ना
1: जी।
0: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी, I can take it, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के उसको 10 और तरीकों से, it was like that, it was like, मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ। मैं कह रहा यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ।
1: oh.
0: I was like a kid in a candy store, जिसमें वो होता है ना, लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। She could interpret melody
1: wow.
0: in so many different ways that she would spoil you for choice.
1: Wow. क्या बात,
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है।
1: तो आपको याद आए कि चॉइस,
0: ऑफकोर्स, मतलब कि यार, मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी। हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके, मतलब यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है। तो यू नो, आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफकोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वॉज अ फिनोमेना
1: जी,
0: शी वॉज अ फिनोमेना, एंड दैट इज वाई शी वॉज आशा भोसले। यू नो, जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती।
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
1: जी।
0: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर, दैट्स अ ह्यूज थिंग, एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन
1: जी।
0: तो दैट इज वाई शी वॉज आशा भोसले। लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी,
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था। अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है, इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम इस तरह की तहजीब जो है

0: हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ, इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है
1: जी,
0: यू नो। तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है।
1: वाह,
0: यू नो,
1: क्या प्यारी बात।
0: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है। अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर। तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, विच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग
1: जी।
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो। मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते एक मतलब पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूछा है, अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त मुश्किल था। ऑलराइट सैमी, व्हाट्स योर नेम? आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड। या आई नो, आई नो यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड, या बट व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा बोल से तो हे आशा, यू नो, मैंने कहा यार ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी।
1: Wow.
0: So he said, but what's the first full name? I said, her name is Ashaji Bhosle.
1: What a trick.
0: हाँ, तो उन्होंने कहा आशाजी भोसले। I said, yeah. Okay, fine. और वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्होंने। तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी, और
0: मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा बस देख लो आशा जी। आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया, मैं आपको पता कि वो कैसे हुआ। बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी
1: जी,
0: सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी,
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं। तो चीज़ें नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानता। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते लेकिन पीछे से छुरा मार देते। तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया।
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और यू नो, बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी
1: जी।
0: शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी।
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट्स से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी।
1: ओ,
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, मतलब सार्कैज़म टू द कोर। एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर, अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है। अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया। हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है।
1: जिससे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती,
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी।
1: ओह।

0: And that is a fact. She did.
1: Kya baat hai.
0: You know, so, you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and unke saath koi takalluf nahi tha.
1: Ji.
0: Unke saath wohi apna pan tha, aur wo bhi, kai dafa, she used to also be awake till late, to kabhi kabhi main agar us side pe hota tha, to main achanak aa jata tha, to sabse pehle pooch, khana khaya tumne ki nahi? Maine kaha nahi khaya. Acha, baitho. जो भी उस वक्त किचन में था, अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी. यू नो, लाइक आई सेड, शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था.
1: जी, कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है.

जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉल आउट।

0: जितने मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं,
1: थैंक यू,
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ.
0: लगता नहीं आपको देख के.
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं.
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है. लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स. मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट.
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया.
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है. अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था.
0: ओके.
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर.
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी. गाना, मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही. तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था.
0: जी.
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है.
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी. अच्छा, रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ. और फिर उसके थोड़ी देर, कुछ अर्से बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया. तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू किए क्योंकि और कोई गाता नहीं था. तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया. और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज़ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज़ में रखो.
0: जी.
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाई मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाज़ें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है. तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा. तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया. तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है. तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे. यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स.
0: जी,
1: इंस्ट्रूमेंटल हो
0: सकता है,
1: यू नो, एंड ऑल दैट. तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच.
0: यस.
1: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया. लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की, मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है.
0: जी.
1: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप. अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी. तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं. तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू. आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही.
0: जी.
1: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
0: तो अफसोस होता है.
1: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा.
0: जी. लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
1: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ.
0: जी जी.
1: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी,
0: लेकिन वापस रिवाइव हुई.
1: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या?
0: जी.
1: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे, विच वॉज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है.
0: जी.
1: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे,
0: बहुत.
1: हाँ. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया, और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
0: खूब चली।

0: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल.
1: जी
0: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन. Immediately it affected the
1: sales of the music.
0: Sales of the music, but by that time वो पार हो चुके थे.
1: जी जी जी.
0: They were already declared a super hit because the people loved the songs. ठीक है ना. तो अब that was one of those very few examples in history, musical history कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well but the soundtrack did really really well.
1: Yes. लोग आज भी याद करते.
0: हाँ, लोग आज भी याद करते. हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है. अब जैसे कि पंचम दा का शोले.
1: जी.
0: He got the maximum amount of awards and sales because of Shole.
1: Hmm.
0: But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
1: Of course, that's the truth.
0: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
1: जी.
0: But because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
1: everything.
0: Everything.
1: Yeah.
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका.
1: जी.
0: And it was, you know, it was people were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. They were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context.
1: Right.
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, आई लव द सॉन्ग्स इवन बिफोर द मूवी वॉज रिलीज.
1: जी.
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए.
1: वो एक सेपरेट एंटिटी,
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूं. मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है.
1: जी.
0: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी. यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना.
1: राइट.
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर. यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर. ऑफकोर्स टूडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that lekin phir bhi you don't have the time to watch a film all the time.
1: Ji.
0: But music stays with you, music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet.
1: Right. Very.
0: Ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti. Kabhi bhi banda kehta hai yaar काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता.
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास. मुसाफिर हूँ यारो.
1: जी.
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है.
1: जी.
0: एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन. बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी. सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, under, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
1: जी.
0: और उसका मेन कैरेक्टर जूली था. लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है.
1: जी.
0: भूल गया सब कुछ क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है.
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं.
0: एग्जैक्टली. एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट.
1: रिलीज इन 1975.
0: वाओ, देयर यू गो. तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रेकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो वट दे यूज टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे.
1: जी.
0: कॉम्पाइलेशन में और इस तरह से. तो वो गाने जो थे बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे. और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन. अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जा.
1: जी. ये आज के जमाने.
0: हाँ, आज के जमाने. तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ. तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था. तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन.
1: राइट.
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कॉम्पोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कॉम्पोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग.
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है.
0: हाँ. तुम इसके अंदर, मैं अपनापन बहुत अंदर

0: निकालता हूं
1: जी,
0: तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा. मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर. लेकिन कम से कम लोगों ने सुना तो सही. लेकिन यहां पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया. अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कह यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ बढ़ा,
0: ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो. अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ.
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदिया.
1: जी,
0: द फिल्म आई रियली एंजॉयड मेकिंग द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म सदिया, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है आज भी.
1: जी,
0: एंड मुझे बड़ा उससे बड़ा मतलब दुख हुआ
1: कि फिल्म नहीं चली,
0: कि वो फिल्म नहीं चली, और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए. लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी वाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच टू दोस.
1: एंड लकी के कौन से गाने की बात
0: सुन जरा. मैंने कहा सुन जरा, आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग. आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मरतबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ
1: जी,
0: तो जो एक

0: लिरिक्स जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने, तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।
1: अरे गजब,
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त। शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी।
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को, उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है,
0: कौन करता है आप, मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट एंड आई एम जस्ट आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी।

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे, अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया, और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक, कि व्हाट वाज द प्रोसेस, कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: जी, आप जी।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है, और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखे, क्योंकि वी डिडंट नो विच वन टू कीप,
0: right.
1: You know, because they were all so good and different in their own way. He would give us every shot, he would give in a different way. So, wo unke saath kaam karke jo experience mila was something that was absolutely priceless. And I learned so much from all of these people.
0: Kya
1: and it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं?
1: इश्क तुम्हारा

0: स्टूडियो में लाइव आएंगे?
1: जरूर आऊंगा, जरूर, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफकोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माई प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में

0: कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थीं। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बुझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी, और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है, उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए, और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं, अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाज़ा लगाया है, लेकिन बहुत लोगों को अंदाज़ा लगाना बाकी है। तो आप ज़रा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं, प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल। इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहां कीजिए जहां हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज़ होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द, पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले, एक श्रोता ने ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरे करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज़ किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफ़ेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार के निशाने उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियाँ लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं, कहानी सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियां, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें, मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़े और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है तो वो भी बताइए, श्रोताओं ने वो भी बताया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपने यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे वे गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमति फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम, विरह दर्द को आंचल में समेटे मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा, जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुँचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफ़र में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफ़र। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज़, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बूझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

उनका गाना था भूपेंद्र हेमलता, हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी ज़रूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी, और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियाँ दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो ज़रूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छाँव में बैठ कर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएँ फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है।

विशाल शेखर का संगीत विशाल दालदानी के लिखे बोल केके और सुनिधि की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म टैक्सी नंबर 911 से। कार्यक्रम का अगला गीत केके और सुनिधि की आवाज़ में ही फिल्म खट्टा मीठा से।

0: प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खट्टा मीठा से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीख लेने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के रील के युग में युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद का जीवन दृढ़ संकल्प और संघर्ष से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस रैली में एनडीए के सांसद और बड़ी संख्या में समर्थक तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर बात होगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा बाधक नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और सीपीसीटी के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान से पूजा अभिषेक शुरू हुआ। बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन, आभूषण और फूलों से बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बात खेल की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। खुशी ने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की है। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं और इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। खास बात यह है कि मैच भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान होगा। अफगानिस्तान लंबे समय से अपने घरेलू मुकाबले भारत में आयोजित करता रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और आज भी मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल और उज्जैन संभाग में कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और नदियां उफान पर हैं। बारिश को देखते हुए भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, एसएएफ, सीआईएसएफ, जेल गार्ड, होम गार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की संयुक्त परेड होगी और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सतना जिले के चित्रकूट में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। सर्वाधिक संख्या किसानों की है, जो अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने के लिए को लेकर इस अमावस्या को चित्रकूट पहुंचते हैं। बड़वानी में कल युवा संगम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 125 बेरोजगार आवेदकों ने पंजीयन करवाया, जिसमें 3 कंपनियों द्वारा 91 बेरोजगार आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से

0: आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
0: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दे

की सुरीली धड़कन, आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे

0: सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार लिया है।
0: और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
1: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना
1: मेरा तो मन करता है
0: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल
1: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
0: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
1: मीठा होता है
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज
1: मेहनत तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगे हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
1: चट से पहन लेंगे
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं
1: श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
0: जी।
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सवार

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियाँ जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है, वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप

0: डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
0: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आती।
1: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी। हाँ, है ना, ऊर्जा संगठित करके रखना होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है। क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धारण
0: जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल।

0: बिल्कुल प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं, पर देखा है ना आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं, तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहां सेल लगा है।

0: महिला यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
1: नहीं यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
1: वैसे दीपा अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है, और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
0: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
1: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो इससे इंग्लिश अच्छी होती है, बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं जो एक बेहतरीन दिनचर्या है जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
1: एक हमारे सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है, स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है, वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ, सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है, किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
0: बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
1: और आप क्या करना है,
0: हमें तो गीत सुनना है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से करना है उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है, जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक और साथ ही कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने सुंदर।
0: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले, इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की, जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है, ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है।

0: है ना,
1: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना और जब घर उस खुशबू से महकता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है,
0: देखिए क्या करते हैं।

हरी।

दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है और इस तरह से स्वादिष्ट

0: ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं,
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात

0: बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद में उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: बिल्कुल
0: और
1: एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई में उनको कॉल किया करता
1: क्या
0: था।
1: बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा। जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर जय
1: गाना।
0: किशन,
1: हाँ बिल्कुल, जरूर।
0: शैलेंद्र
1: हाँ, सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: फिर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे. बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी. तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई. उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा. किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है. वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में. हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद. अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए. तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से. तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी. तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ. तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई. सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था. वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से 4-5 महीने में. मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा. हाँ, ये वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा. तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा. मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर. और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका. उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था. हाँ, वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर. तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था. तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो. तो रैंडमली आया, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है. तो सैंडविच खाते हैं, चलो. उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे. तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार. फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ. फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी. उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ. तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया. उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं.
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जाओ वहां पे, बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी. हम तो ये करके आए हैं. उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है. मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर. तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं. मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है. और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा भी होता है. तो मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है. तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं. तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए. उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया. तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया।

0: और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो।

0: विथ अस हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने, मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर, मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा। टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना, हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले। वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक्स सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो
1: हाँ।
0: एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया। वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया। मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल।
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ,
1: ओ हो।
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कानून गांव से
1: छूट जाते हैं, लूज बाद में ऐसे ऐसे छूटते हैं
0: जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
1: बिल्कुल।
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, दो शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई एम टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। Would you like? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: No!
2: सांबा?
3: No!
2: रॉम्बा?
3: No!
2: सांबा?
3: No!
2: टकीला?
3: No!
2: टैंगो?
3: No!
2: चार्ल्सटन?
3: No!
2: पोल्का?
3: No!
2: No?
3: No!
2: तो फिर क्या हो?

संग टोल, देख दुनिया है गोल, दिल में जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक मीडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे। तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि

0: मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: बाबा
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे, बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना
0: सब
1: अपने सुनने वालों को बता देंगे, सब लोग रोमन
0: सब रोमन में पढ़ते हैं
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्ट्रा फोर्स नाम था उस शो का। साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: में कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी।

0: तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूं।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: चाचा चौधरी पे शो। हाँ, मतलब कई
1: डोगा डोगा डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म।
0: हाँ, हाँ।
1: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
0: हाँ,
1: तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।

0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है, मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है।
0: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
1: और क्या कहूँ मैं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं
1: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन। और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका दोस्त राजवीर सिंह चौहान।
1: और मैं हूं रचना। श्रोताओं, हर बुधवार की तरह आज भी हम इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़े हैं।

0: श्रोताओं से जुड़ने का एक खूबसूरत माध्यम है।
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हमें सोशल मीडिया के जरिए अपनी फरमाइश भेजते हैं और हर संदेश के साथ मिलता है ढेर सारा प्यार और अपनापन। सच कहें, जब हम आपके संदेश पढ़ते हैं तो आपकी पसंद के गीत आप तक पहुँचाते हैं तो लगता है जैसे दूरियाँ रही ही नहीं है, हम एक साथ जुड़ चुके हैं।
0: बिल्कुल सही कहा राजवीर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश के साथ। तो पहले गीत की फरमाइश हमें भेजी है नागोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजचंद्र जी शाह ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश की फरमाइश पर पेश है

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली 6 का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया था मोहित चौहान ने, संगीतकार थे एआर रहमान और गीतकार थे प्रसून जोशी। रचना इसी के साथ हमें अगली फरमाइश भेजी है असलम सैफी ने, जे बुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद अली सैफी, भाई आबाद खान ने, तीव्रता डाबरी पारा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, साहोदरी मरकाम ने, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, नेहा राहटा, दीक्षा कुशा मूणत ने, छत्तीसगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने, बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, सर्क संजय मारकंडे, बेबी किट्टू ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है सीहोर से शेख मूसा भाईजान ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है दोस्तों सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहिती, रितु, मुकेश जगताप, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया आरजू, जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज ने इस गीत की फरमाइश की है।
4: और साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है आलम जी, कवि प्रेमचंद प्रेम जी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया जी, मनोहर लाल गांधी ने, उज्जैन मध्य प्रदेश से वैशाली चौहान, सीमा चौहान, राजेंद्र सिंह चौहान, श्रीधरा कनिष्का ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम ने, गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति ने, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

तो दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म फिजा का सुपरहिट गाना, जिसे गाया था उदित नारायण अलकाई याग्निक ने, जिसे संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीतकार थे गुलजार। तो साथियों अगले गीत की फरमाइश

0: हमें भेजी है देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्रिय ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है गुमला झारखंड से नजमुल होदा, SM जावेद ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश मिली है हमें नई दिल्ली से दीपांशु खोरवाल, अमन खोरवाल, सचिन खोरवाल, जयराम खोरवाल। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है गाँव लोहगढ़ ठाकुरा, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। साथ ही इस गीत की फरमाइश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। साथ ही इस गीत की फरमाइश है सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और खन्ना परिवार।
1: इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, पराजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के ने। ग्राम कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता हांगोड़े, कुमारी प्रियाली हांगोड़े, पार्थ हांगोड़े ने। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की फरमाइश पर पेश है

दोस्तों, ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म दिल मांगे मोड़ से खूबसूरत गीत, जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक ने, संगीतकार थे हिमेश रेशमिया और गीतकार थे समीर। इसी के साथ श्रोताओं की अगली फरमाइश है लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना। इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा ने, सांकरा सोमनी जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप शाह साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जेतक विर्क, मीका विर्क ने, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका वाणी ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश भेजी है भटिंडा रोड मंडी डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अर्जुन नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है रोवर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी की फरमाइश पर दोस्तों पेश है हमारा ये अगला गीत।

0: दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म एतराज से सुपरहिट गीत, जिसे गाया था उदित नारायण अलका याग्निक ने, इसे संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने और गीतकार थे समीर। इसी के साथ हमें अगली फरमाइश भेजी है मोरटका खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी, किशन, भावना, मनमानस, कनिका पटेल ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, इस्लामपुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नासिर पटेल, रिजवान, अंजुम, अल्फिया, सानिया, रेहान, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना ने इस गीत की फरमाइश की है।
1: और इसके साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव सोना यादव ने, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा, इशिका वर्मा ने, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्पण जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी तृप्ति जायसवाल ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने, जिला सोलापुर महाराष्ट्र से संतोष कुमार नागड़े, सुजाता नागड़े, सूरज नागड़े, समर्थ नागड़े की फरमाइश पर पेश है
0: ये कब छोड़ दिया।

0: तो दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर एक और खूबसूरत गीत, फिल्म झूम बराबर झूम से गायक राहत फतेह अली खान महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया था शंकर एहसान लोय ने और गीतकार थे गुलजार। साथियों इसी के साथ अगली फरमाइश है फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा शिवानी चौरसिया, पवन की। इसी के साथ इस गीत की फरमाइश की है कासगंज से योगेंद्र नायक ने, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है दोस्तों मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायदे, आशीष महुरकर ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है सागर लखनादोन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब। साथ ही इस गीत की फरमाइश है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरी मोहन पाल, बेबी लक्ष्य ने। छिंदवाड़ा बेरणी मध्य प्रदेश से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से ने। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चांसोलिया, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवानिशा खेड़ा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है श्रीनगर राजस्थान से नेकी राम बंसीवाल ने।
1: और इसी के साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गड़िया से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी ने। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी, दिलीप कुमार चंद्रवंशी ने। नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है धनोरी तेलीवाला उत्तरा

उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ने। इसी के साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम पीड़पा पोस्ट कलानी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरबार, कौशल्या अहिरबार, मोहनी अहिरबार, शीबा अहिरबार की फरमाइश पर पेश है

0: तो दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म बेवफा से खूबसूरत गीत, जिसे गाया था उदित नारायण ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीतकार थे समीर। तो साथियों अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह रिंकी शेखावत ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ऑक्सीजन पार्क अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना हीरामणि शेंडे, किशोर धनाड़े, हिम्मत राव शुंगारे, संजय कुमार गांधीनगर गुजरात से, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल पाल सहानी ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है घोसला से शंकर सिंह भाटी, जय भाटी, राजपाल सिंह भाटी, राशि भाटी, केशवी भाटी ने। इस गीत की फरमाइश है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है दोस्तों अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौरमान, कुशप्रीत कौरमान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौरमान ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है संभाजी चौक नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता की।
1: और इसी के साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता ने। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार ने। कृष्णानगर दिल्ली से मुकेश शर्मा, संगीता शर्मा, निधि शर्मा ने। बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

तो दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म वीर ज़ारा से सुपरहिट गीत, जिसे गाया था उदित नारायण ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने और गीतकार थे जावेद अख्तर। इसी के साथ अगली फरमाइश है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना ने, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंडांगी, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी की फरमाइश पर पेश अगला गीत।

0: तो दोस्तों ये था आपकी फरमाइश पर फिल्म परदेश का सुपरहिट गीत, जिसे गाया था कुमार सानू, अलका याग्निक ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीतकार थे आनंद बख्शी।
1: तो दोस्तों इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का हमारा यह संगीत भरा सफर, आपके पसंदीदा गीत और प्यारी फरमाइशें आपको पसंद आई होंगी।
0: जी हाँ, और हमेशा की तरह आप अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। अपनी पसंद, फरमाइशें और संदेश हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भेजते रहिए, ताकि हम हर बुधवार उन्हें अपनी रेडियो तरंगों के जरिए आप तक पहुंचा सकें।
1: फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम आपकी फरमाइश के साथ। लेकर आएंगे आपकी ही फरमाइश पर कुछ नए गीत, नए संदेश।
0: तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन। मैं राजवीर
1: और मैं रचना
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी उज्जैन है। संध्या के 6 बज चुके हैं और समय हो चला है हमारे विशेष कार्यक्रम भजन संध्या का। उज्जैन की इस पावन और पवित्र नगरी से बाबा महाकाल की छत्रछाया में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, भक्ति और संगीत का जब मेल होता है तो आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। तो चलिए आज की इस भक्तिमयी संध्या की शुरुआत करते हैं श्री राम के उस रस से जिसे चखते ही जीवन धन्य हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि दुनिया के सारे स्वाद एक तरफ और राम नाम का रस एक तरफ। आइए सुनते हैं यह भावपूर्ण भजन।

राम रसायन का आनंद लेने के बाद अब मन में एक ही अभिलाषा उठती है कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय रूपी गृह में पधारें। भक्ति भक्त शबरी की तरह ही जब जब जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। पेश है अगला भजन।

श्रोताओं, ग्रंथों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वयं भगवान राम से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। राम नाम वह नौका है जो भव सागर से पार उतार देती है। आइए इसी महिमा को दर्शाता हुआ यह सुंदर भजन सुनते हैं।

श्री राम की भक्ति की इस पावन धारा के बाद चलिए अब रुख करते हैं ब्रज की गलियों का, जहाँ श्री कृष्ण राधा की युगल छवि का चिंतन ही मन को असीम शांति देता है। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में समर्पित यह भजन पेश है।

श्रोताओं, बाबा महाकाल की इस पावन नगरी उज्जैन में संध्याकालीन सभा हो और देवाधिदेव महादेव का स्मरण न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। संध्या की इस बेला में आइए शीश झुकाते हैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में और सुनते हैं उनका यह प्रसिद्ध भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। यह आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 MHz पर। अब आप इसे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। बाबा महाकाल की पावन नगरी और माँ शिप्रा के तट उज्जैन से मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विनय। श्रोताओं, आज की यह शाम बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सदाबहार और दिल को छू जाने वाले नगमे, जिन्होंने हर दौर में संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। चाहे मोहब्बत का इजहार हो, यादों का सफ़र हो, या जिंदगी का कोई खूबसूरत मोड़, ये गीत हर पल में मिठास घोल देते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं सुरों का यह सुहाना सफ़र। शुरुआत करते हैं प्यार और एहसासों से भरे एक ऐसे गीत से जिसे सुनकर दिल का हर कोना मुस्कुरा उठता है। साहिर लुधियानवी साहब की लिखी नज़्म, खयाम साहब का रूहानी संगीत और मुकेश जी की वो मखमली आवाज़। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वर्ष 1976 में आई यशराज फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी से गायक मुकेश जी की आवाज़ में प्रस्तुत है यह अमर गीत। आइए सुनते हैं।

क्या बात है, मुकेश जी की आवाज ने मानो माहौल में एक अलग ही सुकून घोल दिया। अब रुक करते हैं थोड़ा चुलबुले और रोमानी अंदाज की तरफ। साल 1969 में आई फिल्म शक्ति फिल्म्स की यादगार फिल्म आराधना, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नया सुपरस्टार दिया, राजेश खन्ना जी। सचिन देव बर्मन जी की धुन पर किशोर कुमार जी की जादुई आवाज और ऊर्जावान आवाज में सुनिए यह गीत।

किशोरदा की आवाज़ का जादू ही ऐसा है कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। और अब जब बात भारतीय संगीत की हो और स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1964 में प्रदर्शित फिल्म वो कौन थी का यह गीत संगीत जगत का एक अमूल्य रत्न है। आइए सुनते हैं इस सदाबहार नगमे को।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं उदित नारायण साधना सरगम जी की आवाज़ में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये बेहतरीन नगमा।

प्यारे साथियों, ये था कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम के 7 बजने को है। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने

0: भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई

0: लीमा श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारिशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7:05 हो चुके हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल आकाशवाणी केंद्र से आप सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से 7:21 पर माटीरी बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत आप सुनेंगे। दिल्ली केंद्र से 8:00 संसद समीक्षा सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से 8:15 पर सुर्खियों में कार्यक्रम सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से 8:45 पर समाचार संध्या कार्यक्रम और 9:00 News@9 प्रोग्राम 9:15 पर उर्दू में समाचार सुने जा सकेंगे। दिल्ली केंद्र से ही 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम सुना जा सकेगा। 10:00 भोपाल केंद्र से आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन पाएंगे। 10:30 पर राग रजनी कार्यक्रम भोपाल केंद्र से ही सुना जा सकेगा। साथ ही साथ 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुना जा सकेगा। 6:05 पर विविध भारती मुंबई केंद्र से वंदनवार और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुन पाएंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम विविध भारती मुंबई केंद्र से 6:45 पर आप सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से महाकाल वंदन कार्यक्रम प्रातः 7:00 और भोपाल केंद्र से 7:10 पर प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुप्रभात उज्जैन 7:20 पर सुना जा सकेगा। साथ ही साथ दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रातः 8:00 और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग 8:30 पर सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एपिसोड 7 9:15 पर सुना जा सकेगा। साथ ही साथ उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से ही बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीत प्रातः 9:30 पर और सिंहस्थ संवाद प्रातः 10:00 सुन पाएंगे। कुछ बातें कुछ गीत सजीव फोन इन आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से 10:15 पर आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम, 12:00 हिंदी न्यूज बुलेटिन और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई से ही सुरीला सफर 1:00 सुना जा सकेगा। भोपाल केंद्र से 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 2:30 पर सदाबहार नगमे फिल्मी गीत कार्यक्रम सखी सहेली 3:00 सुना जा सकेगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम शाम 4:00 विविध भारती मुंबई केंद्र से सुन पाएंगे। युवाणी कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से शाम 5:00 और भजन संध्या शाम 6:00 सुन पाएंगे। किसान वाणी कार्यक्रम 6:30 पर उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे। साथ ही साथ मालवी समाचार मालवी गीतारी गूंज कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से 7:21 पर सुना जा सकेगा। 8:45 पर समाचार संध्या आप सुन पाएंगे। साथ ही साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम भोपाल केंद्र से 9:30 पर

आप सुन पाएंगे। दिल्ली केंद्र से रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से सुना जा सकेगा। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। शाम के 7:10 होने को है, कृपया इंतजार कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह नीट मामले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। वहीं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित भी किया।
1: कि हमारे यहाँ 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए, उसी समय सारे प्लांट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हरेक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलीन एस लालभाई और वाइस चेयरमैन पुनीत लालभाई से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि अरविंद ग्रुप मध्य प्रदेश के देवास, पीएम मित्र पार्क और बेटमा में अपनी इकाइयां स्थापित करेगा। पीएम मित्र पार्क में एक साल के भीतर उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से होगी। इस बार जिला, विकासखंड, नगर और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत भी वंदे मातरम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रगान और परेड की सलामी होगी। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। कार्यक्रम में पदक अलंकरण और परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भोपाल के बड़े तालाब में कल नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुबह 11 बजे से यह यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से ज्यादा नावों पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री विश्वास सारंग आज बोट क्लब पहुंचे और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, नावों के संचालन, गोताखोरों और SDRF की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध के साथ या उसकी जगह वनस्पति वसा, स्टार्च और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से भोपाल के श्यामला हिल स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में कल से 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आधारित होगी। इसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भोपाल की महापौर मालती राय करेंगी। प्रदर्शनी में देशभक्ति और विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरों और जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। केंद्र सरकार ने देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत 3 अगस्त को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। ये अभियान 1 साल तक चलेगा। अभियान के तहत शहरों के साथ गांवों और कस्बों में भी लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ ई प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। एक पेड़ प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने उस सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत विद्यार्थियों को पौधारोपण के साथ जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग में कमी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। लगाए गए पौधों की जानकारी मेरी लाइफ पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्व हाथी दिवस पर भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय परिसर में हाथियों के संरक्षण और इतिहास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश दुनिया के प्राचीनतम हाथी क्षेत्रों में से एक रहा है। पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास ने कहा कि हाथियों का प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य में प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है। कार्यक्रम में गजलोक वाइल्ड सेक्रेड इटर्नल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन भी किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बड़वानी में टोरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं शहडोल में नदी पर पुल नहीं होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। नीमच जिले में पंख अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार में एड्स रोग के प्रति जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकालकर अभियान का शुभारंभ किया गया। और राजगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभागवार समीक्षा बैठक कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
6: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आइए लिए चलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में, जहां पर मौजूद है धरती की खुशबू, खेत खलियान की बात, किसान की मेहनत और गांव की सौंधी सौगात। नमस्कार मित्रों, आकाशवाणी उज्जैन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आपका अपना प्रिय ग्रामीण कार्यक्रम माटी की बात, एक ऐसा मंच जहां माटी की महक है, खेती की समझ है, गांव की संस्कृति है और किसान भाई बहनों के अनुभवों का खजाना है। तो जुड़िए हमारे साथ, सुनिए खेती किसानी की उपयोगी जानकारी, मौसम और कृषि संबंधित सलाह तथा गाँव के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आइए माटी से जुड़े, माटी को समझे और माटी के संग आगे बढ़े। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की बात।

तो नमस्कार का जात राम राम मारा किसान साथी हूँ। तो सबसे पहला तो यो बताई तुम्हारे थम के थम कैसा हो। अरे केवा को मतलब यो के चकाचक तो हो नहीं। देखो मैं तो भगवान की आज प्रार्थना करूँ कि थम सब हमारा जो श्रोतावण हो, जो हमारे सुनी रहा हो, जो हमारा आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र से जुड़िया हुआ हो, थम सब चकाचक रहो। तो सबसे पहला तो थम सबको स्वागत है, वंदन है और को साथ घणो घणो अभिनंदन भी है। देखो अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी प्रसारण वाला विशेष माटी की बात कार्यक्रम के एक बार फिर मैं तुम्हारा सबका बीच में लेके आई गई हूँ। आज बुधवार है, अपनी तिथि के देखा तो आज अपना सावन महीना का कृष्ण पक्ष की अमावस्या हो गई है। आज यह कोई मामूली अमावस्या नहीं है, आज दिवासो है। न तुम सबके भली भांति मालूम होगा कि आज का दिन को कितरो बड़ो महत्व है। आज का दिन अपना गांव शहर की छोरियावन जवारा मतलब एक दिया में गेहूं बोई के उनकी अच्छी देख रेख करी के बड़ा करे ने फिर आज का दिन परवाह है, मतलब नदी ना तालाब में विसर्जन करे है। अनिदन फिर अलग अलग तरीका ती खेल भी खेले जाए

त्योहार का मजा लेना है तो गांव वन में जाओ, वहाँ घना मजा आया। नहीं गेम यानी त्योहार का नहीं खेल वन का। उसके बाद आज विश्व हाथी दिवस भी है। अब हाथी दिवस को यो कि 12 अगस्त के हाथी दिवस मनाए, यानी कि शुरुआत वर्ष 2012 में कंपेटिशिया सिम्स और एलिफेंट फाउंडेशन द्वारा करी गई थी। उनको उद्देश्य था कि हाथियों का संरक्षण और उनका प्राकृतिक आवास की रक्षा और अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी चुनौतियां उनका प्रति जागरूकता बढ़ाना। भारत में हाथी के राष्ट्रीय धरोहर पशु को दर्जा भी प्राप्त है। उका बात आए अपना मुख्य विषय पे, जिको नाम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अणि दिवस को भी अपनो एक अलग ज महत्व है, क्योंकि तुम्हारे मालूम है कि 12 अगस्त के युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए है। अणि की घोषणा वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा करी गई थी। यो दिन युवाओं में जुड़ा मुद्दा, उनकी चुनौतियाँ और विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाए है। इको उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी का क्षेत्र में युवाओं के सशक्त बनाना है। यो दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया तो। उसके बाद हमारे भी मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अने दिवस को भी अपनों एक अलग ज महत्व है। मतलब 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाए तो अपन आगे अपना कार्यक्रम में इतनी जुड़ी गंज बात करेंगे। इन्हीं संबंध में मैं आज एक भेंट वार्ता भी सुनाऊंगा, जिमें युवा का स्वस्थ जीवन में पीठ रेवा को मूल मंत्र पे बात करवाऊंगा। पर उका पहला यो बताओ कि सोयाबीन का कहीं हाल है? मतलब मजे में तो है नहीं, अबे तो उनमें फूल आवा लगी गया है, तो उनकी देख रेख की जिम्मेदारी और भी बढ़ी गई है। देख जो अबे इल्ली नहीं लगी जाए उनमें, तो मालूम पड़े कि इतना दिन देख रेख करी ना, आखिरी में सब पानी फिर जाए। तो अपने खास जिम्मेदारी और भी बढ़ी गई है इनकी, अपनी जानकारी अपना ध्यान रखवा की। मेहनत पे पानी फरी जाए तो पानी तो याद आयो कि पानी कैसे कहीं पड़ी रोए तुम्हारा यहाँ, मतलब तुम्हारे क्षेत्र में। सही बताऊँ तो अब लग्यो है कि वाकई में सावन आयो है। कहीं लपकी के पानी आयो परसों रात ती चालू हुयो यो पन्नो, कई जगह नदी नाला उफान पे लग दिया इन्हें। ऐसा में एक बात को ध्यान रख जो कि कभी नदी नाला के देखवाने जाओ तो ध्यान ते किनारा पे नहीं जानो है, नहीं तो मालूम है नहीं कि बारिश में मिट्टी कमजोर हुई जाए है। ऐसा में धसवा को डर और भी बढ़ी जाए है। ऐसी जगह अपने विशेष ध्यान रखना है। ने मारी मानो तो कोई इतना जरूरी भी नहीं है कि अपन वहां जावा सही, घर ते देखो अपना मोबाइल फोन में टीवी पे सब बताई दे कि कहाँ की जगह पूर आई ने कहाँ की जगह बाढ़ आई। जब सब घरे बैठे सुविधा अपने मिली रही है तो अपन क्यों जाए फालतू में रिस्क लेवाने। बाकी इन सब जानकारी का अपन आगे वाला अपना प्रोग्राम में लांगे सही जिकल लिए। तुम्हारे कहीं नहीं करना है, बस बने रहना है हम सबके अपना साथ है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे, ने सुनता रहना है अपने रेडियो पे। तो चलो एक ही जानकारी तो घनसारी लेनी है ने लांगे भी सही, पर जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का साथ अपन मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना है, तो आज भी उन्हीं श्रृंखला के क्यों तोड़ा। आओ अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा का साथ ले चला तुम्हारे आज का मुख्य मालवी समाचार पे। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुत है मालवी समाचार।

नमस्कार, समाचार का साथ मूँ तुम्हारो भाई सुमित कुमार। सबसे पहले आपने बुलेटिन का मुख्य समाचार सुन ला। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने आज अहमदाबाद में गुजरात का प्रमुख उद्योगपतियों की और निवेशकों की मुलाकात करी है। हरियाली अमावस्या का मौका पे आज तड़का उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई है। मौसम विभाग का मुताबिक अगला 24 घंटा में इंदौर उज्जैन संभाग का रतलाम झाबुआ धार बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। अब समाचार विस्तार थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने आज अहमदाबाद में गुजरात का प्रमुख उद्योगपति और निवेशकों की मुलाकात करी है। मेगा निवेश रोड शो का दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूह का प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक भी करी। बैठक में ऊर्जा, वस्त्र, वन निर्माण, अधोसंरचना

औद्योगिक विस्तार का क्षेत्र में निवेश की संभावना पर चर्चा हुई है। अनिक्रम में अरविंद समूह प्रदेश में 3 जगह अपनी इकाइयां स्थापित कर रही है। वहां धार का पीएम मित्र पार्क में करीब 1200 करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव आया है, जहां अगला साल तक उत्पादन शुरू करने को लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने गुजरात का उद्योग जगत के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करियो है। उनका बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने 15 अगस्त के भोपाल का लाल परेड ग्राउंड में होने वाला राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने का और परेड की सलामी ली है। अग्निकाबाद मुख्यमंत्री प्रदेश का जनता के संबोधित भी करेगा। समारोह में पुलिस, SSF, CRSF, जेल गार्ड, होम गार्ड, NCC और स्काउट गार्ड्स की संयुक्त परेड होएगा और मुख्यमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री समारोह ने पहले मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पहुंची के शहीदों के श्रद्धांजलि देगा। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोलियो है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति में CPCT परीक्षा बाधक नहीं बननी चाहिए। उनने अधिकारियों के निर्देश दिया है कि CPCT परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के लेके जल्द सकारात्मक निर्णय लियो जाए। मुख्यमंत्री ने बोलियो है कि पात्र कर्मचारियों के पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और CPCT का कारण कहीं भी कर्मचारी की पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं करो जा सकते हैं। हरियाली अमावस्या का मौका पे आज तड़का उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई है। करीब 2:30 बजे मंदिर का कपाट खुलिया गया और विधि विधान की पूजा अभिषेक शुरू हुई। बाबा महाकाल को जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फलों की रस की पंचामृत अभिषेक करो गयो। अनिकाबाद भांग, चंदन, आभूषण और फूलों की बाबा महाकाल को आकर्षक श्रृंगार किया गया। प्रदेश का फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभोड़ ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतियो है। खुशी ने वुमेन इंडिविजुअल स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करी है। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी है और इनमें पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग को प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अब बात मौसम की, तो प्रदेश में पिछला 3 दिन की तेज बारिश को दौर जारी है। भोपाल और उज्जैन संभाग में कई जगह बाढ़ जैसा हालात और नदियां उफान पे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगला 24 घंटा में इंदौर, उज्जैन संभाग का रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इन जिला में 4 इंच या सप्ती अनिति अधिक बारिश होने का अनुमान है। लगातार बारिश का चलते इन क्षेत्र में बाढ़ खतरों और भी बढ़ी गयो है। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने काले आगरमालवा जिला का दौरा कर दौरान स्वास्थ्य और पोषण दिवस शिविरों का अचानक निरीक्षण करियो। उनने महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की स्थिति देखी कि गर्भवती महिला ने उनके स्वास्थ्य, प्रसव, पूर्व जांच और टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। बड़वानी में युवा संगम रोजगार मेला का आयोजन करो गयो, जिन्हें 125 बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन करायो। 3 कंपनियों ने 91 युवाओं के प्रारंभिक रूप से चयन करो। वाज कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समय सीमा बैठक में 9-17 अगस्त तक चली जानी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की समीक्षा भी करी गई है। उड़ान योजना के तहत प्रदेश की प्राथमिकता वाली 5 हवाई पट्टियों में खंडवा को भी शामिल करो गयो है। इनमें जिला में व्यापार, उद्योग और पर्यटन के बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास करके ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर जैसा पर्यटन स्थल तक पहुंचने में आसान हो सकती है। झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भट्ट की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों और अंतर विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन की 2,647 लंबित शिकायत का जल्द और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने का निर्देश दिया है। तो ये था आज का अपना मुख्य मालवी समाचार।

तो देखो, आज का जमाना में युवा हमारा देश को सबसे मोटी ताकत है। यह अपन क्यों कह रहा, क्योंकि आज है विश्व युवा दिवस, और विश्व युवा दिवस पे अपन बात करवा रहा हूँ युवाओं का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और फिटनेस का बारे में। देखो, देश की तरक्की, समाज को विकास और आवारा भविष्य।

आज का युवा पर निर्भर करें है। युवा में ऊर्जा है, उत्साह है, कुछ नया कर दिखावा की इच्छा है। जरूरत बस इतनी है कि अणि ऊर्जा के सही दिशा मिल जावे। हर साल युवा दिवस मनाओ को मकसद भी योज है कि युवा अपनी ताकत के पहचाने, अपनी काबिलियत के निखारे और समाज और देश की प्रगति में अपनों योगदान दे। युवा दिवस मतलब खाली एक दिन को उत्सव मनाओ को दिन नहीं है, ठीक है, एक दिन को उत्सव मनाने को दिन नहीं समझना चाहे। इन दिन हमारे मन में एक नई सोच आई है, नई ऊर्जा और नया संकल्प पैदा करने को दिन है, क्योंकि आज का समय में युवा का सामने अवसर तो घना है और चुनौतियां भी हैं। एक तरफ शिक्षा, तकनीकी, इंटरनेट और रोजगार का नया रास्ता खुलिया है, तो दूसरी तरफ तनाव, बेरोजगारी, नशा, गलत संगत, मोबाइल की लत और अस्वस्थ जीवन शैली जैसी समस्या भी युवाओं के सामने खड़ी है। अब अपन इपे घन सारी बात करांगा युवा दिवस पे, पर क्यों नहीं अपन अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथे और इन्हीं चीज़ पे और बात करवा के साथे ले चला हमारे आज का अपना एक पहला सा और प्यारा सा गीत पे, क्योंकि अगर गीत से शुरुआत होएगा कहीं चीज़ की और उसके बाद गणेश वंदन से अगर शुरुआत होएगा कहीं चीज़ की तो उन्हें अपना कार्यक्रम में तो चार चांद लग जाएगा। तो आओ अपना कार्यक्रम में एक बार गणेश वंदना सुन लो।

तो अपन बात कर रहे थे युवा होने का बारे में, तो युवा होने का बीच जो समस्या सामने खड़ी है, इन सब का बीच सबसे जरूरी बात यह है कि युवा अपनी सेहत पे ध्यान दे। फिटनेस आज खाली शरीर बनाओ को काम नहीं है, जिम जानो तक सीमित नहीं है। फिटनेस मतलब स्वस्थ शरीर, शांत मन, अच्छी नींद, सही खान पीन और नियमित शारीरिक गतिविधि। आजकल युवाओं की दिनचर्या में मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया को इस्तेमाल घणो बढ़ी गयो है। कई युवा घंटा तक मोबाइल चलाता रहे, पढ़ाई और काम करते समय लगातार कुर्सी पे बैठा रहे और शारीरिक गतिविधियाँ बहुत कम हुई गई है। इको असर धीरे धीरे शरीर पे पड़े है। पहला गांव में युवा खेत खलिहान को काम करता, पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, क्रिकेट और दूसरा खेल खेलता था। शरीर अपना आप सक्रिय रहता तो आज जीवन शैली बदली गई है। निकाले अब जानबूझ के मतलब जानबूझ के व्यायाम का लिए समय निकालना जरूरी हुई गई है। युवा चाहे तो जिम जावे, दौड़ लगावे, योग करे, सूर्य नमस्कार करे, साइकिल चलावे या कोई खेल खेले, लेकिन रोज शरीर ने सक्रिय रखना जरूरी है। फिटनेस का लिए घणों पैसों खर्च करना जरूरी नहीं है। गांव की गलियां, खेत, मेड़, खेल मैदान और घर को आंगन भी व्यायाम की अच्छी जगह बनी सके है। फिटनेस का साथ खान पान पर ध्यान देना भी जरूरी है। आजकल जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह की फास्ट फूड चीज़ें युवा का भोजन को हिस्सों बनी रही है। कभी कभार ये चीज़ें खाई सकती है, लेकिन रोजमर्रा के भोजन में पौष्टिक चीज़ होनी जरूरी है। दूध, दही, छाछ, दाल, हरी सब्जी, फल, अंकुरित अनाज, बाजरो, ज्वार, मक्का और घर को साधारण भोजन शरीर का मजबूत बनाने में मदद करे। मालवा की धरती पर पौष्टिक भोजन की परंपरा पहला से चली आई रही है। जरूरत बस आने की है कि अपनी खान पान की अच्छी परंपरा ने फिर अपनावा युवा तो अच्छो युवा बेहतर युवा बनी पाएगा। युवा की फिटनेस खाली शरीर तक सीमित नहीं होए, मन भी स्वस्थ रहना इतना जरूरी हुए है। आज पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता, परीक्षा, करियर, परिवार और भविष्य के लेके युवाओं में तनाव बढ़ी गयो है। सोशल मीडिया पे दूसरा की सफलता देख देख के कई युवा अपनी तुलना दूसरा से करवा लगी जाए, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी अलग हुई है। कहीं के सफलता मिली जाए तो कहीं के थोड़ा समय लगी जाए। असफलता जिंदगी को अंत नहीं है। असफलता तो मैंने सीखा अपना ये सिखाए है कि अगली बार और मेहनत करो और अच्छो प्रदर्शन करो। मन में कोई परेशानी हो, तनाव हो, तो भविष्य की चिंता हो, तो उसे अकेले सहन करने के बजाय परिवार, दोस्त,

0: शिक्षक या कहीं भरोसामंद व्यक्ति का साथ बात करनी चाहें। अपनी बात कहनी कमजोरी नहीं है, बल्कि युवा वही है जो अपना परेशानी के समझे और उनको समाधान खोजने की कोशिश करें। तो आओ आज का विशेष दिन युवा दिवस पे अपन मुख्य रूप से एक ऐसा व्यक्ति से फिटनेस का संबंध में जानकारी लाओ जो अभी वर्तमान में तो जिम चल ही रहा पर उनको इतिहास एक युवा का लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। तो पहला सुनो इनकी बात, फिर मैं बताऊँ उनका बारे में।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में।
2: नमस्कार
1: सर, सबसे पहले अपने श्रोताओं को आपके बारे में बताइए, आपका फिटनेस के क्षेत्र में आने का सफर कैसे शुरू हुआ?
2: सबसे पहले तो आकाशवाणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, वो भी आज इंटरनेशनल यूथ डे पे। मेरा नाम प्रारब्ध जैन है, मुझे सब सेतु के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में मैं वेद नगर में पवन पुत्र जिम एंड फिटनेस हब रन कर रहा हूँ। फिटनेस की सफर की बात करें तो फिटनेस का सफर शुरू से मुझे क्रेज था फिटनेस के लिए। फिटनेस के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करी, मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया आईटी फील्ड से और एमबीए की पढ़ाई भी कंप्लीट करी। जब मैं दिल्ली गया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तो वंस आई फेस्ड द इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी, वहां पे भी मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशन किए। वहां से मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ क्योंकि नॉर्मल सिटी की अपेक्षा मेट्रो में ज्यादा क्रेज होता है फिटनेस को लेकर।
1: तो प्रारब्ध जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने आईटी की पढ़ाई भी की और उसी के साथ एमबीए भी किया
2: जी,
1: इसके बावजूद आपने फिटनेस को अपना करियर के रूप में कैसे चुना?
2: एक्चुअली मेरे घर में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे फिजिकल फिट रहने का बचपन से शौक था। अच्छा। मैं रनिंग करता था, मैं पावर स्पोर्ट्स खेलता था, पावर लिफ्टिंग भी शुरू करी मैंने आर्म रेसलिंग भी शुरू करी, जिसको रस्सा कस्सी टग ऑफ वॉर बोलते हैं वो भी हम लोग स्टेट लेवल तक गए। फिर धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। रही बात आपकी कि मैंने ये कैसे स्टार्ट करा, तो ये क्रेज मेरे को इनबिल्ट आया खाने का, प्रॉपर वर्कआउट करने का, अपने आप को फिट रखने का। मेरे घर में सबका ये रहता था कि पढ़ाई करो, मेरे घर में क्या अधिकतर सारे घर में यही रहता है। मगर जब हम हर चीज को एब्रॉड से कंपेयर करते हैं तो वहां पे एक मैंडेटरी स्पोर्ट सब्जेक्ट होता है जो हर किसी को लेना पड़ता है। इससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बाकी वो जो पढ़ाई करते हैं उनसे उनकी उससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मेरा अपने घर वालों से भी यही निवेदन था जब मैं स्टार्ट किया कि मुझे इस फील्ड में जाने दो। मगर आप लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर तो उसका बच्चा भी डॉक्टर, तो सबका बच्चा डॉक्टर, इनका बच्चा इंजीनियर तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर, ये हम माइंड सेट के साथ घूम रहे हैं आज भी। तो मेरा जैसे मैंने मेरे घर वालों से निवेदन किया था और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, वैसे मैं आजकल के पेरेंट्स से भी ये सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट देने की गुजारिश करता हूँ कि उनके बच्चों को उनके हिसाब से जीने का मौका दें जो वाकई हिसाब उनके काम का हो, गलत चीज में नहीं। मगर एक फिजिकल एक्टिविटी इज टोटली मस्ट फॉर एवरीवन, ना कि बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है।
1: आपने बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में लंबे समय तक काम किया है, इन दोनों खेलों के में क्या अंतर है और आप में से आपको इनमें से कौन सा पसंद है?
2: देखिए, बॉडी बिल्डिंग मैं अभी भी कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग मैंने एंड कर दिया। दोनों में एक कॉमन चीज है जो कि है डिसिप्लिन। किसी भी चीज को लंबे समय तक करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल।
2: पावर लिफ्टिंग काम है स्ट्रेंथ का, आपका लिफ्ट का, आपके रेस्ट का। वहीं पर बॉडी बिल्डिंग काम है पूरी सिमेट्री का। आजकल सबसे महंगा स्पोर्ट्स अगर कोई देखें तो बॉडी बिल्डिंग है। हर चीज मेजर करके खाना, ये बॉडी बिल्डिंग का रूप है। जहां आप बात करेंगे पावर लिफ्टिंग की, वहां पे आपको अपने से ज्यादा वेट उठाना है बॉडी वेट से, तो आपको एक्सेस कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा। वहीं पर आपका बॉडी बिल्डिंग में आपको नपा तुला खाना है, नपी तुली वर्कआउट करना है और प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक से चलना है।
1: सर,

0: कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है,
1: जी
0: मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
1: जी
0: तो ऐसे में आज के युवाओं में जिम जाने और फिट रहने का क्रेज बढ़ रहा है। तो
1: जी
0: आपके अनुसार फिटनेस की सही परिभाषा क्या है?
1: देखिए, फिटनेस की सही परिभाषा तो ये है कि फिटनेस में आपको माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अच्छा दिमाग और अच्छा शरीर, ये दोनों व्यक्ति के पास होना चाहिए। रही बात फिटनेस की परिभाषा, सिंपल डिफाइन ये होती है कि आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी एक्टिवनेस हो और आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी अच्छी हो। फिटनेस का मायना ये होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे में जो व्यक्ति पहली बार जिम शुरू करना चाहता है, उसे
1: जी
0: शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए सर, मैं सभी युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि जो भी जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली बार जिम गए हैं, वो पेशेंस रखें। लिफ्टिंग में ईगो लिफ्ट ना करें। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। अपनी ट्रेनर्स की बात माने और वो सामने वाला कितना वेट उठा रहा है, बस मैं इतना उठा रहा हूं, इस चीज से अपने आप को कंपेयर ना करें।
0: सर, ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ दिनों तक व्यायाम करने के बाद तो आज का युवा छोड़ देता है जिम जाना या फिर एक्सरसाइज करना। तो ऐसे में नियमित व्यायाम की आदत कैसे विकसित की जा सकती है?
1: देखिए सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पहले दिन आप आए, आपने 1.5 घंटा वर्कआउट कर लिया, तो आपके 4-5 दिन खराब होंगे क्योंकि आपका बॉडी पेन करेगा।
0: बिल्कुल
1: कई लोग ये बोलते हैं कि मैं जिम छोड़ रहा हूं तो जिम छोड़ने के बाद मेरा शरीर फूल जाता है, इसलिए जिम बेकार है। कोई भी चीज बेकार नहीं होती। आप जिम छोड़ने के तुरंत बाद आपको फैट गेन क्यों होता है? क्योंकि आपका डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। जैसे अपन ने पहले डिस्कस करा था कि डिसिप्लिन इज मस्ट, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपको आज आधा घंटा करा, कल उस चीज को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा डाइट बढ़ाइए, थोड़ी सारी चीजें करिए। अगर डाइट, वर्कआउट और रेस्ट आपने प्रॉपर किया तो आपको फिटनेस अचीव होगी।
0: सर, हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर डाइट, सप्लीमेंट और फिटनेस को लेकर कई तरह की जानकारियां मिलती है, जैसे कि 50 ग्राम चना मिक्सी में डालो, एक केला लो, रोज रात को ये चने गलाओ। तो ऐसे में सर, श्रोताओं को सही और गलत जानकारी में अंतर कैसे करना चाहिए?
1: देखिए सर, जैसा मैंने पहले बोला था कि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा स्पोर्ट्स है। बॉडी बिल्डिंग बहुत दूर की बात है, हम अभी बात कर रहे हैं फिटनेस की।
0: बिल्कुल
1: फिटनेस भी महंगा स्पोर्ट्स, या फिटनेस भी एक लाइफ स्टाइल है जो महंगी इसलिए है क्योंकि उसमें अपना आपको टाइम देना है, उसमें आपको अपना पैसा देना है और सबसे जरूरी उसमें आपको अपनी नींद देनी है। आजकल आपने देखा होगा जिम में लोग कॉफी का पाउच फाड़ते हैं और उसको डायरेक्ट मुंह में डालते हैं और पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जो कि ये बहुत गलत है। जब तक कोई चीज डाइल्यूट ना होगी और आप उसको इंटेक नहीं करोगे, तब तक वो प्रॉपर बॉडी में डिजॉल्व नहीं होगी। रही बात वे प्रोटीन के नॉलेज की या दूसरी चीजों की नॉलेज की, तो जिसने चीज का प्रैक्टिकल करा है या जो वर्तमान में इसको ले रहा है या जो आपके सामने दिख रहा है, उससे आप पूछिए, वो आपको सही गाइडेंस करेगा। आप एब्रॉड में बैठा या दुबई में बैठा व्यक्ति को आप देख रहे हो कि ये प्रोटीन खा रहा है और आपने वही प्रोटीन मंगा लिया और खाया और आपको पिंपल्स हो गए या आपका लीवर बैठ गया है, कुछ भी हो गया, तो आप उसकी गर्दन पकड़ने दुबई जाओगे क्या? इसलिए जो व्यक्ति आपके सामने है, एटलीस्ट आप उससे बात तो कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें।
0: सर, एक सवाल ये था कि जिम आते समय एवं जिम में वर्कआउट करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए?
1: देखिए सर, जब भी आप जिम आ रहे हैं तो अपने साथ एक नैपकिन कैरी करके आइए जो कि आपको एक हाइजीन प्रोवाइड करेगी। आप अपने साथ सेपरेट पेयर ऑफ शू लाइए जो कि आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे और आपका जिम स्वच्छ रखेंगे। तीसरी बात, आप प्रॉपर डाइट लेके आए, ऐसी डाइट जो आपको हैवीनेस ना दे, लाइटनेस दे, और आप सारी मशीनों का प्रयोग प्रॉपर करें, उसका मिसयूज ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप प्लेट्स फेंक देते हैं, डंबल फेंक देते हैं या कुछ भी फेंक देते हैं, मशीन फेंक देते हैं, तो उससे क्या रहता है कि मशीन्स खराब होती हैं, फ्लोर खराब होता है और सामने वाले का पैसा खराब होता है।

0: आप अगर अच्छी चीजें ये मेंटेन करेंगे तो आपको साफ सफाई वाली चीजें मिलेंगी और जो वर्कलोड मशीन से प्रॉपर आपकी बॉडी पे आना चाहिए वो प्रॉपर आएगा।
1: सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में सभी के जीवन में व्यस्तता है,
0: जी
1: ऐसे में व्यस्त दिनचर्या और काम के दबाव के बीच आम व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए कितना समय निकाले और किस तरह शुरुआत करें?
0: सर, देखिए शुरुआत तो बेसिकली 20 मिनट 15 मिनट से भी हो सकती है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जो बहुत बिजी शेड्यूल में आते हैं फिर भी वो फिटनेस के लिए टाइम निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, आप 20 मिनट फोन पे बात करते हुए निकाल दोगे, पान की गुमटी पे खड़े होके निकाल दोगे, इधर उधर टल्ले खाते निकाल दोगे, तो आप फिटनेस के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? फिटनेस मेरे हिसाब से एक लाइफ स्टाइल है और एक अधिकार हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो 15 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा हो, यूथ हो, कोई भी हो। मेरे हिसाब से जो ये दुहाई देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जरा भी टाइम नहीं निकल पा रहा 24 घंटे में, ये फिटनेस से बचने का या वर्कआउट से बचने का एक एक्सक्यूज है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जो नियर टू 70 हैं या ऑलमोस्ट अबाउ 70 हैं, जो सर्जन हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो भी तो निकाल रहे हैं टाइम, फिर आप
1: बिल्कुल
0: क्यों नहीं?
1: सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो आकाशवाणी श्रोताओं को आप ये बताइए कि विशेष रूप से जो युवा होते हैं
0: जी
1: उनके लिए आपका स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर क्या संदेश है?
0: देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आजकल अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है।
1: बिल्कुल
0: आप, मैं, एजेड व्यक्ति, टीन्स, जो अपने आप को जेंजीज बोल रहे हैं, वो सारे लोग अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं। तो अच्छा दिखना केवल कपड़ों से नहीं होता, अच्छा दिखना आपका शरीर से भी होता है। और जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका तन स्वस्थ नहीं रहेगा, आप कितने भी महंगे अटायर्स पहन लेंगे, कितनी भी महंगी गाड़ी पे चल लेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं सभी श्रोताओं से और खासकर यूथ लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि आप दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपने व्यायाम के लिए निकालिए, अपनी डाइट के लिए निकालिए, अपने रेस्ट के लिए निकालिए। मैं नहीं बोलता कि आप किसी चीज को छोड़िए या किसी चीज को पकड़िए, बट एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, जो आपको भगवान ने ऊपर से देके भेजा है। क्योंकि जब तक आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, आप बीमारियों से अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। और अंत में इसी के साथ मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सबको आज इंटरनेशनल यूथ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी फिट फिट रहो, मस्त रहो, और जैसा हमारे यहाँ की पंचलाइन है, आरोग्यम परम भाग्यम, मतलब बिना रोग वाला शरीर ही सबसे ज्यादा मजबूती रखता है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रारब्ध जी, जैसा कि हमने ये सब जानकारी दी फिटनेस के लिए ने, आज का युवाओं में क्रेज़ है फिट रहनो, स्वस्थ रहनो और तंदुरुस्त रहनो, और इन सब के लिए ने तुमने आज जानकारी हमारे श्रोताओं के दिए और वाकई में कारगर है। तो देखो, युवाओं का सामने एक और मोटी चुनौती है नशा की, धोखा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब और अन्य नशीली चीज़ें जाती शरीर का साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो सके। तो कई बार नशा से दूरी, नशे की शुरुआत दोस्त का दबाव में खाली मजाक मजाक में हो जाए, और कई बार एक बार करके देखा और धीरे धीरे वह चीज़ आदत बन जाए। इकाले युवा के नशा से दूर रहना चाहे, और अगर कोई साथी नशा की तरफ बढ़ी दियो है तो कभी भी समझाना चाहे कि असली ताकत नशा करने में नहीं है बल्कि नशा के मना करने में है। खेल, व्यायाम और सकारात्मक संगत युवा का नशे से दूर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज अपन ने मुख्य रूप से अपना कार्यक्रम में जो माटी की बात कार्यक्रम था उनमें वर्तमान समय में युवा की कई स्थिति है, उसके बाद युवा के लिए फिटनेस कितना जरूरी है, इन विषय पर अपन ने बात करी है। अब अपनो टेम भी हो आड़ो है ने, आज अपन ने युवा साथी थी भेंटवार्ता भी सुनी, उनका साथ गीत भी सुनियो। तो मैं आशा करूँ कि तुम्हारे आज का कार्यक्रम में मिली सब जानकारी अच्छी लगी होगा ने उनका साथ अपनो कार्यक्रम भी अच्छा लगे होगा, गाना सुनवा में भी मज़ा आया होगा। तो मारा हिसाब थी आज का वत इतरोज घणो, क्योंकि अपनी बात खत्म नहीं हुई है पर टेम खत्म हो आड़ो है। जो घड़ी की सुई है नी, वह कहीं ती नहीं रुके, वह चलती जाए, अपनी घड़ी भी रोकी लगा दूसरा घड़ी भी चलती जाए। देखे ले आज कल इतरोज घणो, कल फिर अनिश समय पर लेकर आएंगे तुम्हारा बीच एक कार्यक्रम, अपना कार्य ग्राम सभा प्रोग्राम का अंतर्गत माटी की बात और मालवीय गीतारी गूंज कार्यक्रम में। बस तुम बने रहो और हमारे सुनता रहो और

मारे दो यहाँ अनुमति जनिति मुझ जाऊं। अंत में इतना कहूंगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो, उसका साथ सुनता रहो आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र के FM 102.5 MHz पे। तो आज को नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आपने सुने कार्यक्रम माँ तेरी बात। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संत समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य केआरएन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवाद

कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदर

के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ

बताते हुए तंज कसा कि ये सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो गई थी। उसके दो रीजन हैं, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही हैं, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए, तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी, जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया, लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
3: जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं।
2: जी, जी।
3: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की, एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की, तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पे एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी, और इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की।

0: सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिए।
1: यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपने आवश्यकताओं के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहाँ पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी, तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी?
0: यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके। तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है, जहां से रिकवर किया जा रहा है
1: जी,
0: उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिल
1: रही
0: हैं।
1: जी जी जी।
0: लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
1: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
0: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर
1: जी,
0: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इम्पोर्ट सस्ता हो रहा है।
1: जी,
0: कोई
1: जी।
0: और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा। और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने, इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए।
1: जी जी।
0: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
1: यहाँ पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहे कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
0: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को।
1: अच्छा।
0: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है, ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
1: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
0: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा, और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा, स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
1: अलग हो जाएगा। यहाँ यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
0: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं।

0: कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत हैं लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
1: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहाँ पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
0: अब तो सेंटर के अंडर आ गया, तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है।
1: जी जी।
0: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
1: जी,
0: तो एनवायरमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो। लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी, क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन है तो स्टेट में।
1: बिल्कुल।
0: और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक कि माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
1: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
0: जी बिल्कुल। स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है।
1: जी,
0: और
1: जी।
0: स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा, लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन। और जितने भी लाइसेंसेस हैं, बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
1: बिल्कुल।
0: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है।
1: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म
0: हो
1: गई है।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
0: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है, प्राइमरीली दो चीजों के लिए, कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे।
1: जी,
0: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स।
1: हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
0: जी बिल्कुल। जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है, तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है। और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
1: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। बाबा महाकाल की इस पावन नगरी उज्जैन के आप सभी रसिक श्रोताओं का इस सुरीले कार्यक्रम में एक बार फिर पुनः स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम फिल्म संगीत को। सुनते हैं सबसे पहले कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में परदेश फिल्म का यह गाना।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म

0: संगीत शाम के 8:45 को है और अब आप दिल्ली से समाचार संध्या कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कुछ पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
4: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
3: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
5: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना

0: किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसल

0: बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनज़बित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। और नाइजीरिया में दौलत मुश्तरका चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत की फेंसिंग टीम ने सोने के 3 तमगों समेत 5 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूर कर लिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने यह बिल पेश किया, जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन से मुतालिक 1962 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। मजकूरा बिल के तहत कॉरपोरेशन को सनती सामान के शोबे में भी अपनी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। मजकूरा बिल की रूह से रियासती सरकारों को कॉरपोरेशन से सरमाया हासिल करके इमदाद बाहमी के फरोग में शामिल किसी भी इदारे को देने की इजाजत होगी। इसके अलावा ये कॉरपोरेशन इमदाद बाहमी की तरक्की में शामिल किसी भी इदारे या इमदाद बाहमी से मुतालिक किसी भी सोसाइटी को बराह रास्त कर्जे और ग्रांट भी फराहम कर सकती है। लोकसभा ने कानों और मादनियात के फरोग और इन्हें मुनज़बित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। आज दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब से पहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कोयले और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुनज़बित करने से मुतालिक 1957 के एक्ट में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। मजकूरा बिल का मकसद भारत के कानकनी शोबे को और ज्यादा मुअसर सरमायाकारी के लिए साजगार और अहम मादनियात की मुल्क की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तैयार करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनज़बित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुनज़बित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीतर सलाह मशवरे के लिए JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी हैं इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरमैन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुनज़बित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर व खौज की खातिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट ने केरला के नाम को तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 को भी मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी। लोकसभा ने कल इस बिल को पास किया था। मजकूरा बिल का मकसद आईन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला का नाम तब्दील करके केरलम करना है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानून साज असम्बली ने 2024 में एक करारदाद मंजूर करके मरकज से रियासत का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है जबकि आईन में इसे केरला तहरीर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आरई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक बार फिर मुतासिर हुई। शोरगुल की वजह से आज दोनों ऐवानों में सवालात का वक्फा नहीं हो सका। लोकसभा में वक्फा सिफर भी नहीं हो सका जबकि राज्यसभा में यह मुख्तसर मुद्दत के लिए हुआ। हुकूमत की जानिब से यह यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो उठाए गए मसाइल पर तफसीली बहस और जवाब देने के लिए तैयार है, कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के

0: ये मैं असगर अली।
1: मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में बहस कराने के मामले पर अपना मौकिफ बार बार बदल रही है। पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ने पहले तो बहस का मुतालबा किया था, लेकिन जब सरकार इस पर रजामंद हो गई तो अपना मौकिफ बदल दिया। जनाब गोयल ने कहा कि मानसून इजलास शुरू होने के बाद से सरकार लगातार अपोजिशन के साथ बातचीत करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीके इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां भी की हैं और अपोजिशन से बार बार ये अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। जनाब गोयल ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तलबा के मामले समेत किसी भी मामले पर बहस और अरकान की जानिब से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: इधर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन नीट मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर सरकार की जवाबदेही चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारी के लिए पब्लिक सरमाया एक मुतबादिल होने के बजाय इसे तकवियत पहुंचाने वाला एक वसीला होना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों में प्राइवेट सरमाए को यकजा करने में नए तरक्याती बैंक के रोल के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों की मईशतें आलमी सतह पर तरक्की में सरकर्दा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें प्राइवेट सरमाए को रागिब करने में चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरमाए की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद कायम करना, इस्तेहकाम बरकरार रखना और एक तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव का विजन खलाई टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत की जानिब आगे बढ़ाना है। जनाब गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुद किफालत और कौमी तरक्की साथ साथ फरोग पाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की $4 खरब की मईशत मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये $30 खरब की मईशत बनने की राह पर गामजन है। तिजारत से मुतालिक हुकूमत के इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए आज़ाद तजारती समझौते 38 तरक्की याफ्ता ममालिक का इहाता करते हैं, जिनकी मुश्तरका मजमूई घरेलू पैदावार GDP तकरीबन $60 खरब है।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती, पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के जिमनी इम्तिहान 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा डीजी लॉकर पोर्टल के जरिए अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं, जो इस तरह है results.djlocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर दरियाए चनाब में तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया, ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे का

0: जश्न मनाने का एक मुनफरिद और पुरजोश वसीला फराहम हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कबायलियों की अक्सरियत वाले बस्तर खित्ते में भी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया, जो कभी मावनवाजों के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर रहता था। इस तिरंगा यात्रा में नायब वजीर आला विजय शर्मा के हमराह बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से अमन, इतिहाद और मुल्क की तामीर के पैगाम के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला और वजीर दाखिला विजय शर्मा की क्यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूरदराज कबायली इलाके से गुजरी, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में मावनवाजों के बड़े वाकयात पेश आए। तीन रोज़ा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर ज़िले की करेगुट्टा पहाड़ी पर अख्ताम पजीर होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब मावनवाजों की शोरिश खत्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय रेलवेज ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के बालान सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निजाम के चौथे मरहले से मुतालिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निजाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफुजाती निजाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निजाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाजा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके जेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इनफरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का एक एक तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फाइल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरालम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर

0: एसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: नमस्कार।
1: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
2: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें जरूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
1: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
2: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSESCs हैं जहां पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं, चूंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन

0: डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ये साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इन्वॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। CPSEs को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन MSME से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या MSME मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम हैं और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे MSMEs के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं MSMEs के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स

0: 10% राशि अवॉर्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है।
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है। और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूं इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है,

0: तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी। लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCSCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है MSME ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में MSME का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे MSMEs जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी MSME चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे MSME क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है, और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग

0: अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, क्योंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया, और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में, और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहां बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहां कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव प्रदान करते हैं, और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं, और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSESCs भी इसमें ऑपरेट

0: करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और एमएसएमई, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी जीडीपी में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% जीडीपी का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमएसएमईज हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं एमएसएमई चैंपियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करें।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढने, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से,
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए. रही बात वही एफओस से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता. यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलूंगी, कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है. और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी. और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ. प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ. तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है इसकी प्रिपरेशंस 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई है. तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी. पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड. तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
1: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट. क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
3: देखिए अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी. हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफ़ी हद तक हमारे काम आई क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम

0: ये सीखी, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील कि था, बाकी सेम।
1: मेजर प्रोजेक्ट
0: पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात वही एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर
1: पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी।
2: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठूंगी
0: कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है।
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपेडिशन है इसकी प्रिपरेशंस 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपेडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
3: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
3: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
3: दिन महीने बन गए।
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
0: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल, दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड। एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम

0: करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
1: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
0: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए.
1: यस.
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
2: देखिए, जब हम सर्कम नेविगेशन की बात करते हैं तो सर्कम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ.
0: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा. तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख दुखी चल रही थी?
2: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है. हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ. हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया. जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम 2-2 लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे. उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे. और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज. जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे. और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे. अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए. एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी. हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था. चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी. और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए, क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से. हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन. मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए. और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं. तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो. तो ये वेदर था एक्सट्रीम.
0: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
1: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है, क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो, क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
0: तो मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है, तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
1: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस
2: सेलिंग में। एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का, आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
0: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
1: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल, इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
0: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो,
2: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी, पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
0: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे,

0: एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ ख़राब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने, वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं
0: नहीं,
1: बताऊं?
0: बिल्कुल भी नहीं। व्हाट हैपेंस ऑन द बोर्ड स्टेज ऑन द बोर्ड।
1: तो स्ट्रॉन्ग ले रही, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
0: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा?
0: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे अब, एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास 4 बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहाँ पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो उस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज़्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफ़ी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था। और

0: बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही। वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वाज व्हेन वी वर कमिंग टू मुंबई
1: कमिंग टू
2: फ्रॉम
1: मुंबई।
2: केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30 6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है। हम
1: सच अ ब्यूटिफुल
2: ब्यूटिफुल
1: मोमेंट, ओह ग्रेट टू
2: एक्सपीरियंस।
1: आईज। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
3: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्ड वर्क, परसिवेरेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो। दिस इज़ समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी, एंड दिस हैज़ स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था, एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी, एंड दैट इज़ वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर।
1: बहुत ही मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन। आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.earnews@gmail.com।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए कृष्ण राम चौधरी का शहनाई वादन। राग है केदार, मध्य लय, छपताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे कृष्ण राम चौधरी का शहनाई पे बजाया राग केदार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे

0: कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and